यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन EIRF और वेव्स ओटीटी पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकास और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के

0: घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी वाराणसी है। खेती की बातें कार्यक्रम में लीजिए कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर दिनेश कुमार सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
2: किसान भाइयों, बाजार में जो रसायन मिलते हैं इनमें कुछ अत्यधिक जहरीले, कुछ अधिक जहरीले, कुछ औसत जहरीले और कुछ बहुत कम जहरीले होते हैं। जो रसायन सबसे अधिक जहरीले होते हैं वह हैं मिथाइल पैराथियन, मोनोक्रोटोफास, फास्फेमिडान, फॉरेट ग्रेन्यूल और जिंक फास्फाइड। इन रसायनों के पैकेट पर चमकीले लाल रंग का आयत बना रहता है तथा हड्डी का क्रॉस और उस पर खोपड़ी बनी रहती है। इन रसायनों से जो कम जहरीले होते हैं वह हैं 2,4-D, क्यूनालफास, डाइजिनान, क्लोरपाइरीफास, इंडोसल्फान एवं गामा BAC। इनके पैकेट पर बने आयत चमकीले पीले रंग के तथा आयत के नीचे लाल अक्षरों में जहर लिखा रहता है। कुछ औसत किस्म के जहरीले रसायन होते हैं जैसे डाइमेथोएट, कार्बराइल, ब्यूटाक्लोर, थेरम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इनके पैकेट के आयत के आधे भाग पर चमकीला नीला तथा नीचे खतरा शब्द लिखा रहता है। जो रसायन बहुत कम जहरीले होते हैं वह हैं मैंकोजेब, कैप्टान, जिनेब। इनके पैकेट पर बने आयत के आधे भाग पर चमकीला हरा तथा नीचे सावधान शब्द लिखा रहता है। ये सभी रसायन चाहे वह जितने भी कम या ज़्यादा जहरीले हों इनके प्रयोग से पहले इनकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है और इनके प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दवाओं के प्रयोग में सबसे पहले सावधानी दवाओं के चुनाव में रखनी चाहिए। कौन सी दवा किस कीट या बीमारी के नियंत्रण में प्रयोग होती है और कितनी मात्रा में प्रयोग होती है यह जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक दवा प्रत्येक बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकती तथा प्रत्येक खरपतवार नाशी प्रत्येक खरपतवार को नष्ट नहीं कर सकता। बीमारियों, कीड़ों, खरपतवारों तथा अनाज भंडारण के लिए अलग अलग दवाएं प्रयोग होती हैं तथा इनकी मात्रा अलग अलग होती है। दवा का नाम जान लेने के बाद दवा खरीदने की बात आती है। बाजार से दवा खरीदते समय 2-3 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। दवा खरीदते समय डिब्बे पर अंकित तिथि को पढ़ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि दवा की मियाद बीत तो नहीं गई है। बीते मियाद वाली दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का पैकेट अच्छी तरह सील होना चाहिए, क्योंकि खुली दवा में मिलावट की संभावना हो सकती है। दवा अच्छी कंपनी की ही होनी चाहिए, भले ही उसका मूल्य कुछ अधिक क्यों ना हो। घोल बनाते समय कभी भी एक से अधिक प्रकार की दवाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग न करें, इससे फसल को नुकसान पहुँच सकता है। कई तरह की दवाओं को एक साथ तभी मिलाना चाहिए जबकि इस प्रकार की संस्तुति हो। दवा छिड़काव करने के पहले यह भी जानना आवश्यक है कि फसल में कीट संख्या आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए। यदि कीट इतनी संख्या में नहीं है कि वह खेत में आर्थिक क्षति पहुंचा सकें तो दवा का छिड़काव तर्कसंगत नहीं होगा। छिड़काव करते समय किसी भी प्रकार का नशा जैसे बीड़ी, तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए तथा बच्चों और

0: जानवरों को खेत के पास नहीं जाने देना चाहिए। छिड़काव के समय यदि मशीन की नोजल फंस जाए तो भूल कर भी उसे मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। छिड़काव या बुरकाव के समय यदि अस्वस्थता महसूस हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह कहना है कि छिड़काव में दवा की सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम मात्रा प्रयोग करने पर कीड़ों में विष के प्रति सहनशीलता पैदा हो जाती है और ऐसा बार बार करने से कीट नियंत्रण एक दुष्कर कार्य बन जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो दवाओं को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, इससे विष प्रतिरोधकता की संभावना कम हो जाती है। वैसे बाजार में अब जैविक पदार्थ और नीम वाली दवाएं भी आ गई हैं जिनके प्रयोग से रसायनों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर दिनेश कुमार सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो।

मन में जब भी बसाने की बात हो तो प्रभु आप ही हैं जिन्हें हम पल पल याद करते हैं, अपने मन में बसाए रखते हैं।

सच्चा सुख तो केवल भक्ति में है। भक्ति के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं।

0: भक्त संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे विपिन सचदेवा, सुमन कल्याणपुर, शेखर सेन और कंकना बैनर्जी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हम आपके लिए उपलब्ध हैं DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। आइए सुनते हैं विचार बिंदु कार्यक्रम। आज सुनिए अमृतधारा पर विचार।
1: भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं जाह्नवी अर्थात गंगा हूँ, पशुओं में गाय, पुस्तकों में गीता, मंत्रों में गायत्री, पर्वतों में हिमगिरी की भांति ही नदियों में गंगा पवित्र मानी गई है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसका पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब वामनावतार ने तीन डगों में से एक से पाताल, दूसरे से पृथ्वी और तीसरे से आकाश को नापा तो उनकी आकाशगामी चरण को पखार कर ब्रह्म ने अपने कमंडल में रख लिया। यह विष्णु का चरणोदक हुआ। जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गए तो उन्हीं के कुल में उत्पन्न भगीरथ ने विष्णु के इस चरणोदक से अपने पितरों को तारना चाहा। कठिन तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा, उनके कमंडल जल और शिव को प्रसन्न किया। गंगा बड़े वेग से ब्रह्म कमंडल से शिव की जटाओं में आई। वहां से अनेक बाधाओं को पार करती हुई कपिल के आश्रम में जाकर इसी पवित्र जल में भगीरथ के पितरों की राख को सिक्त किया और उन्हें सदगति दी। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार ज्ञान का द्रव अर्थात तरल रूप गंगा है। गम का संस्कृत में अर्थ होता है जाना। सतत गतिशील होने से पृथ्वी को गाय कहते हैं। यह वारी प्रवाह आकाश से पृथ्वी पर उतरा, इसलिए इसे गंगा कहते हैं। भारतीयों के हृदय में गंगा के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे सब नदियों में गंगा का ही दर्शन करते हैं। सर्वा गंगा समुद्र गाह अर्थात समुद्र से मिलने वाली सभी नदियां गंगा का ही रूपांतर हैं। इसीलिए बंगला में सब नदियों को गांगी कहते हैं। सिंहली भाषा में गंगा का अर्थ नदी मात्र है। प्राचीन चीनी भाषा में जाकर यह गांगी गोंग अथवा क्यांग हो गया है। इंडो चीन में शुंग नदी के नाम में शुंग इस क्यांग का ही रूपांतर है। वहां मेरुन का अर्थ है माँ गंगा। कूर्म पुराण की घोषणा है कलौ गंगा विशिष्यते अर्थात कलयुग में सबसे महान तीर्थ गंगा ही है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है एषा गंगा सप्तविधा। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में भी इसकी 7 विधाएं बताई गई हैं। पूर्व में 3 नलिनी लादिनी पावनी, पश्चिम में 3 सीता वंश सिंधु और दक्षिण में भागीरथी। गंगा किनारे बसे नगरों में कूर्म पुराण के अनुसार 4 स्थान अति पवित्र माने गए हैं, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी और गंगा सागर संगम। गंगा की महिमा केवल हिंदुओं ने ही नहीं, फाहियान, इत्सिंग आदि विदेशियों ने तथा रसखान, रहीम, इकबाल, मीर आदि विद्वानों ने भी गाई है। ऐसी मान्यता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के अनेक रोग इसके जल से ठीक हो जाते हैं। इसके जल में स्वयं शुद्ध होते रहने की अद्भुत शक्ति है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा तट को मल, मूत्र, थूक, खखार आदि से दूषित करने वाला पातकी होता है। इसी प्रकार इसके किनारे दतवन करना तथा उसके जल में कपड़े साफ करना भी पाप है। दुख है कि प्रतिदिन इसमें स्नान करने वाले लाखों नर नारी पुराण पर विश्वास कर इसमें स्नान कर अपने को पवित्र करना तो चाहते हैं, किंतु पुराण के निषेध की उपेक्षा कर गंगा को मलमूत्र से दूषित करते हैं। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हर कीमत पर गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प हों।
0: अभी आप विचार बिंदु कार्यक्रम में अमृतधारा पर विचार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार विषय पर डॉक्टर मधु राणा द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
1: डॉक्टर मधु राणा, आज आपसे बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के बारे में बातचीत करूंगी। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ की ऋतुएँ, जो कि हमेशा बदलती रहती है। लेकिन इस बदलते मौसम में यदि हम खुद को भी नहीं बदलते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में इसे ऋतुचर्या कहा गया है, यानी मौसम के अनुसार जीने की कला। आयुर्वेद कहता है गर्मी का यह समय आदान काल होता है, जिसमें सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी और हमारे शरीर का बल सोख लेती है। इसी वजह से गर्मी आते ही हमारे शरीर में पित्त दोष जैसे एसिडिटी, जलन, गुस्सा, पसीना बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि कफ दोष जो शरीर को ठंडक देता है वह कम हो जाता है। शरीर की यह गर्मी सिर्फ पेट में ही नहीं दिमाग में भी चढ़ती है। पित्त पड़ने के कारण इंसान को बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव होने लगता है। आज हम जानेंगे कि बहुत छोटे छोटे और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर हम इस पूरी गर्मी में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुबह की शुरुआत। आयुर्वेद के अनुसार हम सुबह सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, जो एक 5 से 5:30 के बीच का समय होता है, जब हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इस समय की हवा में कुदरती शीतलता और सत्व गुण होता है, जो शरीर के दिन भर के लिए ताजी देता है। जो व्यक्ति धूप निकलने के बाद सोकर उठता है वह दिन की शुरुआत की ही थकान से ही करता है। सुबह सुबह बासी मुंह पानी पीना यह बहुत ही अच्छा आदत है, जिसे हर किसी को पालन करना चाहिए। अगर हम मटके का पानी पीते हैं तो यह मिट्टी का बना होने के कारण पित्त और गर्मी से हमें अच्छी शांति देता है। इसके साथ ही यह कब्ज जैसे समस्याओं को भी दूर करता है। नारियल तेल से अभ्यंग मालिश, गर्मी में तेज धूप के कारण जब त्वचा रूखी होती है, आयुर्वेद के अनुसार से नहाने के 10 मिनट पहले पूरे शरीर पर नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए। नारियल का तेल ठंडा होता है, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम व्यायाम करते हैं तो अपनी शक्ति से आधी शक्ति यानी अर्ध शक्ति का ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जो है हमारी सुबह ठंडी हवा के साथ ही होनी चाहिए, जो कि हम टहलकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान मिलती है। इसके अनुसार आयुर्वेद के अनुसार हम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कई तरह के खान पान का भी प्रयोग करते हैं। आहार, पोषण और पानी का सही विज्ञान यह आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के दिनों में हमारे पेट की जठराग्नि को भी मजबूत करती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि जो भारी खाना हम सर्दियों में आसानी से पचा लेते हैं वह गर्मियों में पेट खराब कर देता है, उल्टी और दस्त का कारण बन जाता है। इसलिए इस मौसम में मीठा, हल्का चिकना और ठंडा और तरल भोजन ही करना चाहिए। भोजन में हम पुराने चावल, गेहूं, जौ, मूंग की दाल का सेवन करें। यह पचने में बहुत हल्के होते हैं। दोपहर के भोजन के बाद मिश्री, जीरा और काला नमक मिली हुई ताजी छाछ पीना अमृत के समान है।
0: श्रोताओं, अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और

आहार विहार विषय पर डॉक्टर मधु राणा द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

शो तो मैं अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे श्री राम पालगांवकर और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 13वीं कड़ी आप सुनेंगे रात 8:10 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात 10 बजे से। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम रात 9:30 पर सुना जा सकता है। कहकशां का समय रहेगा दिन में 12 बजे से। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी डॉक्टर रमा सेन। इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी स्मृति त्रिपाठी। शाम 7:31 पर स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत महेंद्र नाथ त्रिपाठी से उनका काव्य पाठ आप सुनेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई गर्मियों में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत सुनेंगे। इसके अलावा सुरभि सिंह से लोकगीत का आनंद भी उठाया जा सकता है। कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। नन्ही दुनिया कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे का। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सुरभि सिंह के गाए लोकगीत दिन में 1:45 एवं सुबह 9:50 पर भी सुने जा सकते हैं। अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें दिन में 1:15 पर फल सब्जियों का संरक्षण कैसे करें विषय पर डॉक्टर स्वाति शर्मा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा गीत संगीत भी सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर और प्रातः 7:31 पर कलाकार होंगी प्राप्ति पुराणिक। आप इनका गायन सुनेंगे। फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 11 बजे से दिन में 12 बजे तक का। झनकार आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से। मधुरिमा का समय रहेगा प्रातः 8:45 का। उर्दू कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे से। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 13वीं कड़ी आप सुनेंगे रात 8:10 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात 10 बजे से। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम रात 9:30 पर सुना जा सकता है। कहकशां का समय रहेगा दिन में 12 बजे से। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी डॉक्टर रमा सेन। इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी स्मृति त्रिपाठी। शाम 7:31 पर स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत महेंद्र नाथ त्रिपाठी से उनका काव्य पाठ आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम में कृषि जगत में किसान भाई गर्मियों में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत के अलावा सुरभि सिंह के गाय लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं।

युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15 का। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम

बनारस जिंदगी में अक्सर हम शुद्ध और अशुद्ध की बातें किया करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शुद्ध होता क्या है और अशुद्ध क्या है? चलिए सोचिए, आप कब कहते हैं कि पानी शुद्ध है? जब पानी में पानी के अलावा कुछ और नहीं होता तो हम कहते हैं पानी शुद्ध है, साफ है। इसी तरह आप कब कहते हैं कि दूध शुद्ध है? जब दूध में बस दूध होता है और कुछ नहीं तो हम कहते हैं कि दूध शुद्ध है। लेकिन जब आप इसी शुद्ध पानी को इसी शुद्ध दूध में मिलाते हैं तो क्या होता है? दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि जब दोनों शुद्ध थे तो उन्हें मिलकर और डबल शुद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। अब न तो दूध शुद्ध रहा और न पानी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अशुद्धि कहाँ से पैदा हो गई? तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब दो विजातीय या विपरीत स्वभाव एक होते हैं तो वहीं अशुद्धि जन्म लेती है। यानी जब आप एक से दो हो जाते हैं तो वहां पर द्वंद्व खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि जब तक आप भीतर और बाहर एक से होते हैं, शुद्ध होते हैं, फिर चाहे आप भले हों, बुरे हों, सीधे हों, ये सवाल नहीं है। चाहे जैसे हैं, आप शुद्ध हैं। लेकिन जैसे ही बाहर और भीतर आप दो तरह के हो जाते हैं, जब आपके भीतर बहुत सारे आदमी हो जाते हैं, तब वे सब के सब अशुद्ध हो जाते हैं। इसी से शास्त्र कहते हैं कि यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाच क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। यानी कहने का मतलब ये कि सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्यों में एक रूपता होती है, उनमें अंतर नहीं होता। इसी से पंडित भरत व्यास ने कभी लिखा था

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। बनारस इधर कई दिनों से अपने शहर का मौसम काफी डिस्टर्ब चल रहा है। कभी तेज धूप, लू, गर्मी, कभी बदली, आंधी, बारिश, इसमें बच्चे हो या बड़े सब बहुत परेशान हो रहे हैं और बीमार भी। तो इस सीजनल वेरिएशन से पैदा होने वाले बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं और किन घरेलू उपायों से हमें मिल सकता है आराम, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बीएचयू के उप चिकित्सा अधीक्षक भारतीय चिकित्सा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार भारती। तो आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं, अभी ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पे है, जरूरत है इससे बचाव के तरीके एवं ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोगों से बचा जा सके। इस ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से न केवल शरीर का स्नेह नष्ट होता है अपितु मनुष्य में कफ की कमी होती है तथा शरीर में वायु बढ़ती है, जिससे कि वायुजनित रोगों की होने की प्रबल संभावना रहती है। शरीर में वेदना या दर्द का होना स्वाभाविक है, इसलिए स्नेह युक्त भोजन लेने की हमारी ओर से सलाह है। अगर पहले से आप दर्द के रोगी हैं तो चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। इस गर्मी के मौसम में नमक, अम्ल रस, कटु रस से युक्त भोजन आदि का परित्याग या कम कर देना चाहिए। सूर्य की किरणें अर्थात जब सूर्य की किरणें अपने चरम पे हो तो इससे भी बचना चाहिए, इसलिए हमारी सलाह है कि अपने सभी जरूरी कार्यों को दोपहर 12 बजे से पहले एवं बचे कार्यों को शाम 4 बजे के बाद ही करना सुनिश्चित करें। खुली धूप में चलने के बीच बड़े वृक्षों के छांव में थोड़ा अवश्य विश्राम लें। किसी भी कारण से इस मौसम में शरीर का तापमान बढ़ता है, सर में दर्द का अनुभव, अपचन, बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो इसके लिए मेरी सलाह है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें और ऐसा तो नहीं कहीं आप लू आदि के प्रकोप में तो नहीं आ गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न का बहुलता से सेवन करना चाहिए। लघु आहार, सुपाच्य, स्निग्ध और शीतल पदार्थों का सेवन करना हमेशा हितकारी माना गया है। इस मौसम में शीतल जल से स्नान एवं चीनी या गुड़ मिश्रित चने के सत्तू का घोल का सेवन हितकर माना जाता है तथा यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सक्षम है। आम, पुदीना, नींबू आदि मिश्रित शरबत का सेवन करने से भी शरीर में शांति एवं ऊर्जा बनी रहती है। सामान्य से अधिक अगर शरीर का तापमान है तो चंदन, खस आदि का लेप, महीन सूती वस्त्र का धारण करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से व्याप्त छत आदि पर भ्रमण अथवा आराम करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में शरीर में थकान होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शरीर में होने वाली जल की कमी को पूरा कैसे करें, इसके लिए अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन, फल आदि विशेषतः खीरा, तरबूज आदि का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। दूध में मिश्री डालकर रात्रि में सेवन करने से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है, इससे ग्रीष्म ऋतु से हो रही दुर्बलता में भी लाभ होता है। ग्रीष्म ऋतु में बताए दिनचर्या का पालन कर एवं किसी भी अवस्था में शरीर में कोई रोग का लक्षण प्रकट हो तो तुरंत चिकित्सीय देखरेख में अपनी चिकित्सा करवाना सुनिश्चित करें। आप सभी श्रोता जागरूक हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति एवं आहार विहार से इस भीषण गर्मी में हो रहे रोगों से निजात पाना है एवं एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करनी है। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार भारती को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस अब आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे और जान लेते हैं बातें अपने शहर बनारस की। बनारस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में शुभकामनाएं दी, उन्हें देश का महान व्यक्तित्व बताया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्ट्रीट वेंडर प्रमिला देवी को हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट वेंडर राजू को आइसक्रीम, स्ट्रीट वेंडर दीपक कुमार बरनवाल के चाय के स्टॉल को पथ विक्रय प्रमाण पत्र दिया। साथ ही रेडीमेड कपड़े का स्टॉल लगाने वाली बेबी मौर्या, कॉस्मेटिक सामग्री का स्टॉल लगाने वाले कन्हैया और

तमाम अन्य उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए चेक देकर उनका सम्मान किया। सर्किट हाउस और सांस्कृतिक संकुल के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर शाम काशी विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने कालभैरव मंदिर के गर्भगृह में विशेष आरती की और विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजन कर प्रदेश के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बीएचयू में दो दिवसीय विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विचार विमर्श की दिशा निर्धारित करेगा। देश विदेश के 1200 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। बनारस चौकाघाट चौराहे पर पुल के नीचे के ट्रैफिक बूथ को हटा दिया गया है। रेलवे की अपील पर इसकी जगह बदलने की तैयारी चल रही है। यातायात विभाग पूर्व के बूथ को हटाकर चिन्हित जगह पर बैरियर रखकर ट्रायल में जुटा है। 10 दिन के ट्रायल में ट्रैफिक संबंधी परेशानी न होने पर बूथ की जगह बदल दी जाएगी। और रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन 13 जून को कैंट स्टेशन से गया के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जी हां, स्टेशन ट्रेन नंबर 04208 कैंट स्टेशन से शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए गया पहुंचेगी। बनारस आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि पावर ट्रांसफर और लोड देने और केबल स्थानांतरित करने के लिए आज शहर में कई जगहों पर शटडाउन लिया जाएगा, जिनमें लोहता उपकेंद्र का चांदपुर, इरी इंडस्ट्रियल इस्टेट 1, इंडस्ट्रियल 2 मढ़ौली, लोहता फीडर और डीपीएच उपकेंद्र का टाउन 3 और महेशपुर फीडर से सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। और अब बातें मौसम की, तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को न तो आंधी चली और न पानी बरसा। हालांकि बादलों की आवाजाही पूरे दिन बनी रही। अधिकतम तापमान गुरुवार की अपेक्षा 3 डिग्री बढ़ गया। पूर्व के जारी पूर्वानुमानों के अनुसार आज चमक गरज के साथ बारिश हो सकती है और इसके बाद रविवार से आसमान साफ होगा, तापमान बढ़ेगा और पारा 42 डिग्री के पार जाने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो बनारस से ये था अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब इसी के साथ बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन सन 1923 में जन्म हुआ था हिंदी सिने जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का। 13 जून 1923 को अंबाला में जन्मे प्रेम धवन न केवल एक गीतकार थे बल्कि एक कुशल कोरियोग्राफर भी थे। आपने पंडित रविशंकर से संगीत और पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली थी। कम ही लोग जानते हैं कि प्रेम धवन ने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया है। नया दौर फिल्म के गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी आप ही के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। चंदा मामा दूर के ऐ मेरे प्यारे वतन छोड़ो कल की बातें, ऐ वतन हमको तेरी कसम और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत आपकी अमर लेखनी से ही निकले हैं। सिने जगत को आपके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 7 मई 2001 को प्रेम धवन ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

0: इनके साथ ही बनारस आज है पुण्यतिथि प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर और सुप्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार सुहास वर्मा, जिन्हें मुद्रा राक्षस के नाम से जाना जाता है। और अब आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, बनारस काशी कथा। बनारस सबसे पुराना और जीवंत अपना शहर बहुत सारी खूबियों के चलते दुनिया भर में चर्चित है और इसकी इन्हीं खूबियों में से एक है बनारस की गलियाँ। कोई इन गलियों

को भूल भुलैया कहता है तो किसी ने इन गलियों को रहस्यमय संसार का नाम दे दिया है। इनमें से कचौड़ी गली, विश्वनाथ गली, कालिका गली, ये तो ऐसी हैं जिनके बारे में विदेशी भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी गलियां हैं जिनका नाम बनारस शहर की नई पीढ़ी को पता तक नहीं है, और इन्हीं गलियों के बारे में आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम आपके साथ बातें करेंगे। इनमें से चूहा गली के बारे में हम

0: ये बनारस की चंद ऐसी गलियां हैं जिनके नाम और रूप दोनों में कोई समानता नहीं है। हाथी गली महज 2 से 2.5 फीट चौड़ी है, जिसमें हाथी कतई नहीं जा सकता, लेकिन इस गली में बने मकानों की बाहरी दीवारों पर हाथी के चित्र बने हुए हैं, इसलिए इस गली को हाथी गली कहा जाता है। जतनबर से बीबी हटिया होते हुए आगे बाएं हाथ जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको हाथी गली देखने को मिलेगी। इस गली में आप काल भैरव मंदिर की ओर से या गाय घाट की ओर से भी जा सकते हैं, और इसी के थोड़ा आगे बढ़ने पर जब आप पंचगंगा घाट की ओर चलते हैं तो आपको चूहा गली मिलती है, जहां से आगे निकलने पर दाहिनी ओर आप आनंद भैरव होते हुए रामघाट उतर जाते हैं, और जब आप इसी चूहा गली से दाहिने के बजाय बाएं मुड़ करके मंगला गौरी की ओर जाते हैं तो मंगला गौरी मंदिर के ठीक बगल से बाईं ओर पतरसुट्टी गली है। बनारस के पुराने लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति बहुत पतला दुबला होता है उसे पतरसुट्टा या पतरसिट्टा कहा जाता है। तो बनारस की गली जिसे हम पतरसिट्टा या पतरसुट्टी कह रहे हैं, यह गली मंगला गौरी मंदिर के आगे है और महंत नारायण गुरु के आवास पर जाकर खत्म हो जाती है। इस गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर यदि आपने देख लिया कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको नुक्कड़ पर तब तक खड़े रहना होगा जब तक सामने से आने वाला व्यक्ति गली के इस पार न पहुंचाए। कारण ये है कि इस गली में एक साथ 2 व्यक्ति नहीं जा सकते, इसी से इसका नाम पतरसुट्टी गली है। तो बनारस काशी कथा का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। काशी कथा में आज बस इतना ही।
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, बनारस और काशी कथा के साथ ही साथ आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। थोड़ी ही देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स

0: हैंडल AIRNews_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थयात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, CCTV और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृहमंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता।

0: फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गायन। कलाकार हैं प्राप्ति पुराणिक, राग है अहीर भैरव। आपके साथ तबला संगति माता प्रसाद मिश्र की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गायन सुन रहे थे। राग था अहीर भैरव, कलाकार थीं प्राप्ति पुराणिक। आपके साथ तबला संगति माता प्रसाद मिश्र की थी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार प्रभात की प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब जीरो।

0: रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की

0: रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित विजयन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप

0: हीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकत दारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकत दारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहां वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली 2 तरफा चोटी मुलाकात होगी। वजीर आजम मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वजीर आजम मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकद कम्युनिटी जियाफत में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक मस्नूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पेलेग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़श्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ ताबुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रातिस्लावा से सीएम पल्लुरुथ्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मर्तबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमुशान तकरीब में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निजाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल तक बैलिस्टिक मिसाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह निज़ाम

0: के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तहकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफर काफी तेज रफ्तार रहा और यह सफर भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिले दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर का कयाम मोदी हुकूमत के काबिले जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तख्लीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल जिक्र है। ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरद चंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमरीका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से अमरीका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरका मेजबान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। कनाडा की जानिब से सैल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलमी कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने बहरे ओमान में एहतियाती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजानों की मौत पर रात खारजा की जानिब से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिमुल उमूर को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाये किया है। रात खारजा ने उन्हें अपनाए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इंकलाब ने कांग्रेस की लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरख्वास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज्यादा मनफी असर तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हुए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं मधुरिमा कार्यक्रम जो होता है सदाबहार हिंदी फिल्मों के गीतों पर आधारित, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
5: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओ नमस्कार। आज की मधुरिमा के साथ स्वीकारें आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में प्रकृति की बातें हम करेंगे। इन सब जो उपहार स्वरूप प्रकृति ने हमें दिया है कि हम जितना भी इनका आभार व्यक्त करें ये कम होगा। आज के कार्यक्रम में शामिल गीत आपको प्रकृति के साथ होने का एहसास कराएंगे और आपके साथ हम भी शामिल होंगे इस सफर में।

शुद्धम फिल्म अभिलाषा से ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, और इस गीत को लिखा था मजरूह ने और संगीत आर डी बर्मन का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मधुरमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। कुछ जगह घूमने फिरने के लिए विशेष रूप से जैसे ऊपर वाले ने गढ़ा है, यहाँ की विशेषता एक एक बात इसकी करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, जैसे कश्मीर। आइए चलें कश्मीर।

श्रोतों, ये आवाज़ जो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की थी, और फिल्म का नाम था बेमिसाल। संगीत RD बर्मन का था, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मधुरमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, जहाँ की बात कुछ ऐसी कि आप कुछ समय के लिए आए हैं और घूमने, और आपका मन करे बस यहीं होकर रह जाएं, यानी इसी जगह हम अपना घर बसा लें। ताज़ी हवा और प्रकृति के नज़दीक मन लौटने को करे ही ना, कहे दिल कहे रुक जा रे रुक जा।

श्रोताओं, ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की और फिल्म का नाम है मन की आँखें। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और रचना साहिर की।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार फिर। और आज आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ के साथ, और बातें हो रही हैं प्रकृति की। ऐसी वादियों में दिल के अरमान भी कुछ अपनी ही बात करते हुए से लगते हैं, जैसे कह रहे हों,

श्रोता हूँ भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। फिल्म का नाम एक बार फिर, संगीत रघुनाथ सेठ का और रचना है विनोद पांडेय का।

मन अशांत हो या ना भी हो, जब भी समय मिले ज़रूर प्रकृति के करीब रहने का प्रयास होना चाहिए। और इसी गीत के साथ ही आज का मधुरिमा कार्यक्रम के सफ़र को यहीं समाप्त करने की, अपने रेडियो साथी सिद्धार्थ को यहीं दे अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

शुदंग ये आवाज़ें जो आप सुन रहे हैं, ये किशोर कुमार और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम काश। रचना है फारूक कैसर की और संगीत है राजेश रोशन का।

0: മധുരിമ, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡി. മധുരിമ.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा. यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा.

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक

समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की।

0: स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गणकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
1: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
3: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाल सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि

0: प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
1: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आम जन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपदवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
4: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना जनपद चंदौली थाना अली नगर से हमें प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार सितारा बानो पति का नाम अब्दुल कलाम, पता ग्राम रेवसा थाना अली नगर जनपद चंदौली। ये 30/5/2026 सुबह 10 बजे से ग्राम रेवसा थाना अली नगर जनपद चंदौली से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। आयु 25 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट लगभग, शरीर की बनावट सामान्य है और आँखों का विवरण ये भी सामान्य है। और ये हरे रंग की समीज, सलवार और नकाब पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी यदि आपके पास हो तो कृपया थाना अली नगर जनपद चंदौली को देने की कृपा करें। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है।

और ये सूचना हमें प्राप्त हुई है मिर्ज़ापुर जनपद के थाना को शहर से, और ये सूचना अनुज कुमार श्रीवास्तव के लापता होने के बारे में है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष और 4 माह। शरीर मजबूत और गहरा बदन है, चेहरा गोल है और आंखें सामान्य हैं। रंग इनका गेहुआ है और बाल काले हैं। विशिष्ट पहचान के रूप में दाहिने बाजू पर ओम का टैटू है और दाहिने पर भी ओम गुदा हुआ है। ये फुल पैंट क्रीम कलर की और टी शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो जनपद मिर्ज़ापुर थाना को शहर को देने की कृपा करें। ये जनपद मिर्ज़ापुर में पड़ता है और कजरवा पोखरा थाना को शहर ये जगह का नाम है। और अब अगली सूचना जो हमें प्राप्त हुई है, ये सूचना हमें प्राप्त हुई है सोनभद्र जनपद थाना जुगैल से, और सूचना अनुसार विजय जो पति हैं और इनकी पत्नी का नाम है कविता जो लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। आयु है 35 वर्ष, शरीर सामान्य, चेहरा सामान्य, आंखें सामान्य हैं, ऊंचाई 5 फीट है और रंग गोरा है। ये नीला साड़ी, नीले रंग की साड़ी और पैंट चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो जनपद सोनभद्र के थाना जुगैल को देने की कृपा करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ठीक 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

अदब से मुराद वो तहरीरी या जुबानी फ़न लतीफ़ है जो इंसानी जज्बात, अखलाक और माशरती अकदार को बेहतरीन अल्फाज में बयान करता है, और यही अदब हमारी जुबानों को ज़िंदगी बख्शता है, मुस्तकबिल देता है। हमारी उर्दू ज़ुबान जो कि नहायत शाइस्ता, बेहद महज़ब और बहुत खूबसूरत है, इसकी मिठास, इसकी खूबसूरती, इसकी तहजीब गैरों को भी अपना कर लेती है। और जब इस ज़ुबान में अदब रकम किया जाता है तो वो

0: इतना कीमती सरमाया बन जाता है कि हमारी जुबान की अहमियत को कई सौ गुना बढ़ा देता है। और सामिन, ये भी हकीकत है कि हर जुबान का वजूद जब से हुआ तब से ही हर जुबान में अदब भी फरोग पाना शुरू हुआ, ख्वाह वो दुनिया की कोई भी जुबान हो। उसका रस्म अल-ख़त और उस रस्म अल-ख़त के ज़रिए तहरीर किया गया अदब ही उसका बेशकीमत ख़जाना होता है। आज हमने इस अदब को ही अपना मौजू सुखन बनाया है और अपने स्टूडियो में इनेकाद किया है एक मुबाहसे का, जिसका मौजू रखा है अदब कल और आज। और इसमें तबादला ख्याल के लिए हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए मेहमान हैं डॉक्टर अरशद रिज़वी साहब, जो कि खुद प्रोफेसर हैं और लिखना पढ़ना उनका शगफ़ है, किताबें और अदब ही उनका उड़ना बिछोना है। डॉक्टर लुबना हामिद साहिबा, आप भी तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और मुताला आपका बेहतरीन शगफ़ है। मोहतरमा समना ज़ुबैर साहिबा भी तदरीस से वाबस्ता हैं और आपको भी पढ़ने लिखने से और मुताले से बेइंतहा दिलचस्पी है। तो हम अपने तीनों मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और आज के इस मौजू पर आपसे तबादला ख्याल के लिए मदू करते हैं अपनी बहन मोहतरमा फायजा ज़ुबैर साहिबा को।
1: आप सभी हजरात का हमारे आज के इस मुबाहसे में खैर मकदम है। सबसे पहले हम डॉक्टर अरशद रिज़वी साहब से सवाल करना चाहेंगे कि दरअसल अदब आपके ख्याल में किस चीज का नाम है, क्या तारीफ है अदब की?
2: शुक्रिया फायजा साहिबा। दरअसल जो चीज इंसानी जिंदगी को इस तरह मुतासिर करती हो कि इंसानी जिंदगी की समाजी
1: जी
2: अदबी, अदबी से मुराद ये है कि उसका जो ज़हनी नशोनुमा है
1: जी जी,
2: या कहा जाए कि उसके अंदर फ़नून लतीफ़ा जिसे कहते हैं
1: जी,
2: उसका जो उनसुर पाया जाता है उसमें तहरीक हो और वो हज हासिल करे उससे, तो वो जो हज है, हज हासिल होना, वो अदब शामिल हो जाता
1: अच्छा,
2: है।
1: अच्छा अच्छा,
2: इस तरह अदब तख्लीक होता है।
1: अच्छा, लुबना साहिबा, आज के अदब और कदीम अदब में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप?
3: अदब जैसा भी अर्ज़ किया गया कि हमारे लिए एक ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता लिए हुए है।
1: जी जी,
3: पहले अदब बड़ा अदब था।
1: अच्छा,
3: जहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को पढ़ रहे थे और सुन रहे थे
1: जी,
3: लेकिन जब तरक्की पहन तहरीक अमल में आई
1: जी,
3: उसके बाद से अदब ज़माने के करीब हो गया। उस वक्त ऐसा हुआ कि जो हमारे ज़िंदगी के हालात थे, जो हमारी अपनी ज़िंदगी में रोना महोरा था
1: जी,
3: वो अदब में शामिल हो गया।
1: अच्छा,
3: अब क्योंकि ज़माना तगैर पज़ीर है
1: जी,
3: अदब में भी तगैर हुआ
1: बिल्कुल,
3: और ज़माने से हमकिनार अदब हो गया फिर हमारा। तो जो पिछला अदब हम देखते हैं, जिस टाइम हम मीर ग़ालिब मोमिन को देखते हैं
1: जी,
3: हम नसर में देखते हैं, नज़्म में देखते हैं, तो आज भी हमारे यहाँ एक गिरा कदर सरमाया है हमारे लिए
1: बेशक,
3: ठीक है जी। लेकिन ज़िंदगी जहाँ सांस लेती महसूस होती है वो आज के अदब में है, जब हम तरक़ीबन तहरीक से
1: जी
3: वाबस्ता होते हैं।
1: अच्छा,
3: तो उस वक्त जो हमारी ज़िंदगी में हलचल थी, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ रोनमा हो रहा था, उसमें सब कुछ आया हो रहा था।
1: अच्छा,
3: वो अदब से हम किनार हो गए हम।
1: अच्छा,
3: तो अदब जो पहले आपका सवाल है कि जो पहले अदब था और आज का अदब है
1: जी,
3: तो आज भी वही ज़माना है
1: जी।
3: हम कहें कल, तो कल तो देखिए जब तरक्की पान तहरीक आ गई
1: जी,
3: तो हर चीज़ तरक्की में आ गई।
1: अच्छा,
3: आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, आज अदब में बहुत तेज़ तगैर हुआ है। आज अगर आप देखें तो एक तो नई टेक्निक्स
1: जी हाँ,
3: इंफॉर्मेशंस
1: जी
3: अदब में आ गई हैं। अदब में कंप्यूटर, आप देखिए अब ज़्यादातर हमारे जो रसाइल हैं, अखबारात हैं
1: जी,
3: कुछ
1: जी
3: बड़े पैमाने पर शाये हो रहे हैं
1: जी।
3: उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे बहुत तरक्की की है, लेकिन उसमें जो नई टेक्निक्स आई हैं वो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आई हैं। और आज चूंकि हमारे पास जो मोबाइल है
1: जी,
3: अगर देखा जाए तो इन्हें पूरा अदब करीब कर दिया है एक दूसरे के।
1: आपका मतलब ये कि पहले अदब सिर्फ किताबों की हद तक ही महदूद था, लेकिन आज जो है वो इंसान के हाथ में
3: वसत हो गई है, वसत ही हो गया है जी, वसी पैमाने पर आ गया है अदब को
1: जी। हाँ, तो जो ये तगैयुरात होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुफीद भी साबित होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे नुकसान भी होता है, लेकिन वो हमारे अपने ऊपर है कि क्या उसको हासिल करते हैं
3: अपने ऊपर।
2: तगैयुर तबद्दुल जो है हर हालत में हमें फायदा ही पहुंचाता है। बहुत से तगैयुरात ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़वाल की तरफ नहीं जाते हैं, वो उस दौर

0: के तकाजे होते हैं जो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं,
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: हम उसे उस एतबार से उसी तरफ मुड़ते हैं, फिर मजबूर भी हो जाते हैं वही सब लिखने के लिए,
1: जी,
0: क्योंकि जमाना हमसे तकाजा करता है,
1: तकाजा करता
0: और
1: है।
0: अदब जो जमाना तकाजा करता है वही तहरीर करता है।
2: जी, तकलीफें
1: हर
2: हैं, सब
1: मौजू
2: पर
1: को
2: जिक्र।
1: मतलब
2: जी
1: अदब में
2: हाँ,
1: शामिल
2: जी
1: किया
2: जी
1: जा रहा है। समय साहिबा, आप जब जेरे तालीम थी तो किस किस्म का अदब उस जमाने में होता था आप पढ़ती थी, और आज आप माशाल्लाह एक मुअल्लिमा हैं तो क्या पढ़ा रही हैं आप, क्या देखती हैं किस किस्म का अदब आज निसाब में मौजूद है।
2: देखिए, मैं जिस वक्त तालिबे इल्म थी तो वो ज़माना कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं ख़ासकर कदीम अदब की, यानी वो अदब जो जदीद अहद से पहले का अदब था, तो उस फ़न में और उस अदब में हमें अजमत नज़र आती है जो अपने ज़माने को पूरी तरह से उबूर किया हुआ था। गालिब और मीर और वली दक्कनी का अगर हम खास तौर से लिटरेचर और अदब की जब बात हो रही है, तो जैसे और वो एक ऐसा अदब था कि जिसे आज की तारीख में भी शौक से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं
1: जी
2: है कि उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, और बहुत ही शौक और ज़ौक के साथ लोग उसका मुताला आज भी करते हैं। और उसकी ज़बान में लताफत थी और बड़ी बारीकियों के साथ दीगर फ़नी पाबंदियों का ख्याल भी रखा जाता था।
1: अच्छा,
2: आज इतने सालों में के बाद भी वली दक्कनी से लेकर मिर्ज़ा गालिब तक ने जो कुछ भी फरमाया वही आज भी मुस्तनद माना जाता है और समझा जाता
1: क्या
2: है।
1: बात है। जी
2: आज भी जब हम उन लोगों के कलाम को या उनके ज़रिए जो तहरीरें थी उनके
1: जी
2: ज़रिए
1: जी
2: उनका
1: जी
2: मुताला करते हैं अदब में, तो एक अजब ताजगी और लताफत का एहसास हमें होता है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जदीद अदब में हमें उतनी खूबसूरती और
1: अच्छा
2: रानाई के साथ देखने को नहीं मिलता
1: अच्छा
2: है।
1: अच्छा
2: और मैं न सिर्फ उर्दू अदब की बल्कि अंग्रेज़ी लिटरेचर की भी तालिबे इल्म रही हूँ, और यही फ़र्क मैंने वहाँ पर भी महसूस किया। चाहे हम मिल्टन की बात करें या विलियम शेक्सपियर की बात करें, उनके सोनेट्स उनके ड्रामे आज भी आप देख लीजिए उठाकर, मास्टर
1: जी
2: पीस हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काबिल लोग नहीं रहे या उनकी तहरीरों में कोई कमी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में भी उनको कोई चैलेंज कर सकता है या जो चीज़ें उन्होंने विरासत के तौर पर हमें दी हैं
1: जी
2: उसकी कोई बराबरी कर सकता है। अरशद
0: जी
2: साहब, इन्होंने जो अभी बात कही
0: जी
2: कि इनका ज़माना उतना कदीम नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके वक्त में जो अदब आप पढ़ते थे और आज आप जो पढ़ाते हैं, हालांकि वही सब कुछ है उसमें भी, लेकिन फिर भी तरमीम जैसा भी मैम ने बोला कि हुई है, क्या महसूस करते हैं आप।
0: देखिए, हर दौर में अदब की कदरें
2: जी
0: उसके तकाजे होते हैं।
2: जी अच्छा
0: गालिब, मीर और उससे पहले, यानी मैं ये कहूँ कि अमीर खुसरो से लेके कुली कुतुब शाह तक,
2: जी
0: और कुली कुतुब शाह से लेके आज के दौर के शायर, ये पूरा अदब जो है मुख्तलिफ तगैयुरात अपने अंदर समेटे हुए।
2: अच्छा
0: उसकी वजह यह है कि मीर और गालिब के दौर में जो लसानी कदरें थीं
2: जी
0: वो अलग थी। हमारे दौर में हम लसानियात की उन कदरों को उन पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं,
2: जी
0: हम मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है,
2: अच्छा
0: हम आजकल जबान पे बहुत जोर नहीं दे
2: जी
0: रहे
2: हाँ
0: हैं।
2: जी हाँ
0: उस दौर में जबान जो है,
2: हाँ
0: आपने सुना होगा इंशाल्लाह, खान शाह ने जबान की सफाई कराई,
2: जी
0: उसके
2: हाँ
0: बाद
2: जी
0: फिर
2: हाँ
0: नासिक के दौर
2: जी
0: में
2: जी जी
0: जबान की सफाई सुथराई हुई, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त हिंदी अल्फाज बहुत ज़्यादा शामिल थे उर्दू में, और
2: अच्छा
0: धीरे धीरे उर्दू उर्दू की सफाई हुई और फारसी तराकीब शामिल हुई।
2: जी
0: फारसी तराकीब ने ये किया कि उर्दू में जो लोच और जो लताफत है
2: जी
0: वो फारसी तराकीब की वजह से है, तो वो उस दौर की कदरें थी जब जबान पर जोर हुआ करता था।
2: अच्छा
0: अगर आप मौजू के एतबार से देखें तो गालिब ने तंगनाए गजल का शिकवा किया है।
2: जी
0: गजल की जो कदरें थी उस दौर में, आज गजल ने अपना बिल्कुल चोला बदल लिया
2: जी
0: है।
2: हाँ
0: अब आजकल मुशायरे में अगर या इस तरह कोई शेर शायर पढ़ता है तो कहता है साहब इसमें एक शेर गजल का भी हो गया है।
2: जी
0: आपने
2: बिल्कुल
0: महसूस
2: जी
0: सुना होगा
2: जी
0: कि
2: जी
0: शेर
2: हाँ
0: गजल
2: जी
0: का भी हो गया, जबकि
2: सही
0: वो पढ़
2: बात
0: गजल रहा है,
2: जी हाँ
0: कि एक ताज़ा गजल है उसका कहता है एक शेर गजल का भी हो
2: गजल
0: गया।
2: जी जी
0: इसका मतलब कि गजल
2: का जो
0: वो
2: मिजाज
0: जो
2: था
0: मिजाज था वो मिजाज आज नहीं है
2: हाँ
0: बेशक,
2: जी
0: लेकिन वो आज के ज़माने के तकाजे कि गमे जाना पे ही मौकूफ नहीं शेर व गजल, गमे दौरा भी सताए तो गजल होती, आज का शायर
2: क्या
0: ये कह
2: बात
0: रहा
2: है
0: है।
2: जी
0: वो तो लोग कहते हैं मीर के यहाँ कुनूतियत है,
2: जी
0: कुनूतियत नहीं है, बल्कि मीर ने अपने दौर का पूरा नक्शा खींचा
2: नक्शा
0: है। अदब आईना है जिस आईने में हम उस दौर को देख सकते
2: देख
0: हैं, उसके
2: सकते हैं
0: चलती फिरती तस्वीर हमारे सामने आ जाती है।
2: बहुत खूब
0: तो
2: बहुत
0: आज के
2: खूब
0: दौर का, आज का जो अदब है, आज हमारे दौर का सियासी जो तगैयुरात हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो आज
2: जी
0: का हमारा अदब, चूंकि ये दौर जो है ये
2: इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक
0: इलेक्ट्रॉनिक
2: दौर
0: और उसका और इसका दौर है, तो इस पर आज का जो अदीब है वो इस दौर के एतबार से अपने अदब को आगे बढ़ाना
2: आगे
0: चाहिए।
2: बढ़ा
1: आज
2: जी
1: इसी बहस में मैं कहना चाहूंगी,
2: जी
1: शेर मुझे
2: जी
1: याद आया वली का, مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔

0: जी
1: मर्द का एतबार खोती है, ये उस जमाने का जिक्र है
0: अच्छा
1: वली का। और ये आज देखिए, तुझ लब की सिफत लाले,
2: लाले बदख्शां
1: कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला से कहूंगा।
0: क्या गजाला
1: से ये अल्फाज, ये उनका रब्त जब्त
0: जी
1: कितना अलग सा है। और आज जो ये सब रनाई का जिक्र होता है बिल्कुल तो अलग अंदाज में होता है। देखिए जमाना जो होता है ना, वो जो भी उस वक्त कदरें होती हैं वो उन्हीं को बयान करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अदब तब भी सब कुछ यही था, जमाने की रविश, जमाने के हालात कलमबंद हो रहे थे, और आज भी सब कुछ हो रहा है।
0: अच्छा,
1: टेक्निक बदल रही है
0: जी। अगर हम आपसे बात करें कि अदब अतफाल की बात करें अगर हम, तो पहले हम देखते थे कि बच्चों के अदब में अखलाकी कहानियां शामिल होती थी, लेकिन आज जो है वो लगता है कि उसमें भी तब्दीली आई है। तो क्या मुस्बत और मनफी इंकलाबात आए हैं, क्या महसूस करती हैं आप?
1: आज क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया, एक तरह से बच्चों का दिमाग बहुत अलग हो गया है, ये मोबाइल और पिक्चर्स
0: वो भी वक्त के
1: सब बिल्कुल तकाजों से
0: मजबूर हैं वो भी जी।
1: तो आज बच्चों इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में
0: जी।
1: इसलिए जो राइटर्स हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, वो भी उसी अंदाज में लिखते हैं जो बच्चों की जरूरत है आज।
0: अच्छा,
1: बच्चा वही पढ़ेगा जो उसको जरूरत होगी
0: जी।
1: अच्छा, हम आज भी ये वाली बात कहते हैं कि जो हमारे मॉरल स्टडी है वो जरूरी है बच्चों के लिए। तो अगर आप बच्चों को वो सब चीज नहीं देती हैं जो हमारे कदरें हैं, हमारा अदब है, मतलब घर में जो तहजीब तमदन
0: जी, जी, जी।
1: वो नहीं होता है, तो बच्चे हमारे क्या बताइए बताइए।
0: समझ साहब, आपके हिसाब से जो आज का अदब है वो तुलबा के लिए कितना मुफीद है? क्योंकि जैसे अभी रुबना साहिबा ने बताया कि अदब बराए जिंदगी भी है, यानी तहजीब अदाब या अखलाकियात तस्लीमात वगैरह सब अदब ही सिखाता है इंसान को। तो क्या कहना चाहेंगी कि आज के अदब में वो चीजें शामिल हैं?
3: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए जिंदगी है और होना भी चाहिए, और इस अदब में बड़ी वसत है। हमारी जिंदगी का हर पहलू, सामाजिक, सियासी, इंफरादी, इज्तिमाई, हर पहलू अदब, इस अदब में ये अदब अपने अंदर समोए हुए है। और जैसा कहा जाता है कि अदब समाज का आईना होता है, अखलाकी कदरों से लेकर तहजीब व तमद्दुन तक और आदाब से और तस्लीमात से लेकर तंज व मजा तक, इंसानी तारीख का हर पहलू और अंदाज इस अदब से मुतासिर होता है
0: जी।
3: आज के दौर की अगर हम बात करें और आज के तुलबा के नज़रिए से हम बात करें कि उनके लिए ये कितना मुफीद है या उनको वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो मैं बात करूं कि अदब की हर शाख, चाहे वो शायरी हो या फिक्शन हो या फिर हमारे मजामीन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शाख कहीं ना कहीं, इस शाख ने अपनी तरोताजगी और अपनी जो कुदरती शनाख्त थी उसको खोया है।
0: अच्छा।
3: और कहीं कहीं ना कहीं नुकसान उठाया है।
0: अच्छा।
3: आज जिस तरह से हर मेयारी और गैर मेयारी तहरीर को अदब में बड़ी आसानी के साथ जगह मिल जाती है
0: जी,
3: वो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि गौर व फिक्र करने का एक टॉपिक है, और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं या अदब से वाकफियत रखने वाले, गहरे अदब के मुताला करने वाले
0: जी
3: उनको इस तरफ जरूर एक फिक्र करने की जरूरत है। खासकर अगर हम बात करें सिन्फ़ शायरी की
0: जी
3: या फिक्शन की
0: जी,
3: तो हमने ज़रूर कहीं ना कहीं इन असनाफ में अपनी सामाजिक कदरों को या अपनी अखलाकियात को खोते हुए देखा है, जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छा पैगाम नहीं है।
0: अच्छा,
3: और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नस्लें उठा सकती हैं, क्योंकि जो तहजीब और जो खूबसूरती हमारे अदब में थी,
0: हाँ,
3: मुझे लगता है कि अच्छा, मिस हो रही है।
0: डॉक्टर अर्शद साहब, आपके हिसाब से अदब के मेयार में जो गिरावट आई है या उसका मेयार क्या बुलंद हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे? कहाँ तक इनकी बात से इत्तेफाक
2: जी
0: करेंगे?
2: मैं इनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, थोड़ा सा उस पर और रोशनी डालना चाह रहा हूँ
0: जी,
2: कि इसमें कोई शक नहीं कि जमान का जवाल हुआ है। पहले हम जब बच्चों को इब्तदाई तालीम देते थे तो उन्हें तख्ती पे लिखवाते थे
0: जी,
2: और
0: जी।
2: उसमें उनकी ताकि उनकी तहरीर भी बनी और वो अल्फाज, और फिर उसके बाद इमला लिखवाते थे और वो अल्फाज हमारे घरों में राइज थे। आज हमारे घरों में वो अल्फाज जो लताफत से में डूबे हुए थे वो राइज नहीं है। आज का अदीब इस बात पर मजबूर है, अगर वो गालिब और मीर के मेयार पर आज अदब तख्लीक करने लगे तो अदब कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा
0: जी।
2: कि जो साहिब ज़बान है वो भी मजबूर हैं कि अपनी ज़बान को इतना आसान रखना है उन्हें, कि आज का जो मेयार है तलबा का या कारीन का, वो उसे बाकायदा समझ सके और उनकी ज़हनी तस्कीन हो सके। उस दौर में ज़हनी तस्कीन का मेयार और था, आज के दौर में ज़हनी तस्कीन का मेयार और है। अदीब का फ़र्ज़ ये होता है कि वो जिन लोगों के लिए अदब तख्लीक कर रहा है उनके ज़हनों तक रसाई हासिल करे।

0: कर सकते
1: अगर
0: हैं
1: हम
0: जी।
1: उस दौर के वो जो कदरें थी जबानी की,
0: जी
1: उस उन कदरों को लेके आज अदब तख्लीक करेंगे, मसलन मिसाल के तौर पर उस दौर में जो सुरूर ने जो लिखी है फसाना जाए, अगर आज वो तहरीर राइज कर दी
0: जी
1: जाए
0: जी
1: तो कितने लोग उससे हद हासिल करेंगे। सिर्फ समातों तक की सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि वो बाकायदा मुकफ़ा और मुसज्जा
0: जी
1: ज़बान
0: हाँ
1: वो होगी, लेकिन आज मुकफ़ा और मुसज्जा ज़बान समझने वाले कितने हैं।
0: जी
1: लिहाजा
0: हाँ
1: हमारा अदीब जो है इस चीज़ को महसूस कर लिया था, सर सैयद ने भी और गालिब ने अपने खतूत में
0: अच्छा
1: सारी चीज़ें वहीं से उस मेयार से वो नीचे ले आए। जैसे मसलन हाल ही हमारे यहाँ बड़े रिफार्मर कहा जाए कि
0: अच्छा
1: मुसले,
0: जी
1: अदब के मुसले,
0: अच्छा
1: उन्होंने मुकदमे शेर व शायरी में कहा है तीन चीज़ें बड़े अदब के लिए, आफाकी अदब के लिए, कि तफहुस अल्फाज, कायनात का मुतालिया और परवाज़ तख़ील। ये तीन चीज़ें अगर किसी शायर या किसी अदीब के पास है तो बेहतरीन अदब
0: अदब
1: तख्लीक
0: तख्लीक
1: कर
0: कर
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है
1: और इसी हवाले से मीर अनीस की अगर जिक्र करूं कि वो कह रहे हैं कि है कदी है मगर हुस्न है अबरू के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए, सुरमा जेबा है फकत नरगिस से जादू के लिए, जेब है खाले से है चेहरे गुलरू के लिए, दान दाकस के फसाहत व कलाम दारद, हर सुखन मौका वो हर नुकता मकाम दारद। तो वो जो हर सुखन मौका वो हर नुकता
0: हाँ
1: मकाम दारद,
0: जी
1: वो उस दौर में अदब के जो तकाजे थे वहां थे,
0: वहां
1: आज
0: थे।
1: के जो दौर के तकाजे हैं वो यहाँ।
0: लुबना साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस हवाले से आपकी क्या राय है, जैसा भी अरशद साहब ने बताया कि जो अदब आज है वो आज के तकाजे के तहत है, तो आज कैसा अदब होना चाहिए, थोड़ा सा पुराना रंग उसमें शामिल होना चाहिए।
2: आज देखिए ऐसा है ना, गैर मीर गालिब मोमिन की शायरी को सिर्फ आसुदी नहीं पढ़ते हैं, हम जो जमाने
0: जी
2: के
0: जी
2: हालात हैं जो सुन रहे हैं वही हमें लगता है कि हम ठीक है।
0: समीम, बहुत ही बेहतरीन अंदाज और ख्यालात अदब के हवाले से भी आपने समात फरमाए। हमारे इस मुबाहिसे के जो शुरका थे डॉक्टर अरशद रिजवी, मोहतरमा समना जुबैर और डॉक्टर लुबना हामिद, हम उन सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बेहतरीन ख्यालात से हमें नवाजा। मुख्तसर ये कि आज के और गुज़िश्ता सालों के अदब में, यानी कल के अदब में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, बस जो इंसान का मिजाज है उस मिजाज के हिसाब से दरअसल अदब जो है वो तख्लीक होता है।
3: अदब आज और कल, अभी इस अहम मौजू पर यह मुबाहिसा आपने समाप्त किया। शुरुआत थे डॉक्टर अरशद रिजवी, डॉक्टर लुबना हामिद और मोहतरमा समना ज़ुबैर, और आप सबसे महवे गुफ्तगू थी हमारी साथी मोहतरमा फ़ायज़ा ज़ुबैर। और सामीन, अब इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ पर तैयार यह प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अलविदा।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं सुरभि सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में आप सुनेंगे इनके स्वर में खेमटा। उससे पहले कुछ संदेश।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।

श्रोता आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं सुरभि सिंह। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में दादरा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं सुरभि सिंह। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: साथियों, स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। आओ दोस्तों, स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10:20, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार इस संदेश के बाद।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शोधा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा और रचना है अनंत बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। 10:02 और अब 10:03।

श्रोतम फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम आशा।

श्रोताओं, संगीत है लक्ष्मीकांत परिलाल का और रचना है आनंद बख्शी की। 10:07:20

शुदम विजेता पंडित और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, फिल्म का नाम दिल ही दिल में, संगीत मंधीर का, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं झनकार।

अभिजीत पंडित और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, फिल्म का नाम दिल ही दिल में, संगीत मंधीर जतिन का और रचना थी ऐश कंवर का। और अब कार्यक्रम झनकार का ये अगला गीत आइए सुने हमारा आप साथ साथ। 10:16 और 18 सेकेंड।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था दिल तुझको दिया। रचना राजेश रोशन, संगीत राजेश रोशन, यानी गीतकार और संगीतकार राजेश रोशन। और अब कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोतम, फिल्म फकीरा का ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत में आवाज़ें थीं महेंद्र कपूर, अजीज़ नाज़ा, किशोर कुमार, भूषण मेहता की। और इसे संगीत और गीतों से तैयार किया था रविंद्र जैन साहब ने। और अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। आप फिल्म का अंदाज़ा इस गीत के बाद ज़रूर लगा लिए होंगे। और अब ये जो संदेश है वो भी बहुत ज़रूरी है, आपको सुनवाना है। संदेश सुनिए, उसके बाद अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, उसके बाद उस गीत के फिल्म का नाम हम आपको ज़रूर बताएंगे। कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर, अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोतों, कार्यक्रम झनकार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ये फिल्म संगीत पर आधारित आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की। फिल्म का नाम ज्वेल थीफ है और इसमें संगीत SD बर्मन का है, संगीतकार SD

सेंटर से मीडियम वेव पर 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर 10:42 और 20 सेकेंड। फिल्म का नाम कलाकार और इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें, फिल्म का नाम कलाकार और संगीत कल्याण शैनन जी का, और अब कार्यक्रम झनकार का ये अगला गीत।

श्रोताओं में अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें ये थीं, और फिल्म का नाम था जीवनधारा। रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। 10:52 और 37 सेकेंड, अब 10:52 और 41 सेकेंड। कार्यक्रम झनकार का यह है अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म का नाम झुक गया आसमान, संगीत शंकर जयकिशन का, और ये गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार में।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आपने सुना। फिल्म का नाम था झुक गया आसमान और संगीत शंकर जयकिशन का इस गीत के लिए था। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म मर्द का गीत। आइए सुने हमारा साथ साथ।

मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर।

मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

0: श्रोतों कार्यक्रम के अंत में झनकार के आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम था मर्द और संगीत अनु मलिक का था। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम में झनकार अब यहीं संपन्न होता है।
1: परेशान है अपनी किस्मत हैरान है।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 11:33। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम आग गले लग जा। संगीत आर डी बर्मन का और रचना है साहिर लुधियानवी की। 11:02 और 21 सेकेंड।

आशा भोसले और अनवर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत। गीत रचना निदा फाजली की थी और संगीत खय्याम का। और अब कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको अब सुनवाते हैं अनजाना फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाज में ये गीत आप सुनेंगे, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत की कड़ी में अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का लिखा है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे हमने लिया है फिल्म अपने रंग हजार से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत रचना अनजान की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की युगल आवाज में आपने सुना अपनापन फिल्म का गीत, बोल थे आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म बॉबी से। बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र की।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अभी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म से, बोल आनंद बख्शी के, संगीत शिव हरी का और आवाज सुरेश वाडकर की।

किशोर कुमार और साथियों के स्वर में ये गीत आपने सुना फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम के आखिरी गीत तक हम पहुंच गए हैं और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के और तर्ज राजेश रोशन की।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

श्रोतो, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा लेकर। और आज इस कहकशा प्रोग्राम को आपके लिए पेश कर रही है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। गुलाम अली की आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी, कलाम कैसर उल जाफरी का था। गुलाम अली की ही आवाज़ में आपको सुनवाते हैं एक और गज़ल। मुसाफिर चलते चलते थक गया है, मुसाफिर चलते चलते थक गया है, सफर जाने अभी कितना पड़ा है।

है ये शहर तेरा दीवाना, है शहर तेरा दीवाना, कि रब जाने क्या होगा। हर लब पे है तेरा अफसाना, कि रब जाने क्या होगा।

भी सही तो मगर आसरा तो दे। मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में दो जगह, मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में दो जगह, लेकिन खामोश क्यों है तू? कोई फैसला तो दे, मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे।

0: श्रोताओं, आज की इस कहकशा में जिन कलाकारों ने अपने रंग सजाए थे वो थे गुलाम अली साहब, भूपेंद्र सिंह और जगजीत सिंह चित्रा सिंह। आज की इस कहकशा को समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त संजू तिवारी को। नमस्कार। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं स्मृति त्रिपाठी। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं नानक का ये भजन।

स्मृति त्रिपाठी के स्वर में अभी आपने सुना नानक का ये भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में ये गीत, रचना महादेवी वर्मा की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्मृति त्रिपाठी के गाए गीत और भजन। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्राप्ति पुराणिक का गायन। राग है वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबले पर संगत की है माता प्रसाद मिश्र ने।

0: अभी आप सुन रहे थे प्राप्ति पौराणिक का गायन, राग था वृंदावनी सारंग, आपके साथ तबले पर संगीत की माता प्रसाद मिश्र ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना

0: के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ग्राम गहिला थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली निवासी फकीर ने सूचित किया है कि उनके पुत्र विरोधी उर्फ सीताराम दिनांक 12 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, गहरा बदन, रंगे हुआ और चेहरा लंबा है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरी बार इन्हें गुलाबी रंग की शर्ट और जीन्स पैंट में देखा गया था। चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम उड़ी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर निवासी सूरज बीआर की पत्नी गुड़िया दिनांक 8 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, इकहरा बदन, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनकी आंखें गहरे भूरे रंग की हैं। आखिरी बार इन्हें काले रंग की साड़ी में देखा गया था। चंदौली से ही एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम उड़ी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर निवासी संतोष बीआर ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी ललिता दिनांक 8 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 27 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इनकी दाहिनी आंख थोड़ी छोटी है। आखिरी बार इन्हें काले रंग की साड़ी में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:10 पर। आज आप सुनेंगे इसकी 13वीं कड़ी। डॉक्टर रमा सेन की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे महेंद्र नाथ तिवारी का काव्य पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और सुरभि सिंह के गाए लोकगीत के अलावा सुनेंगे गर्मी में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव और दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। सुरभि सिंह के गाए लोकगीत आप लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा रोजाना की तरह शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन। नन्ही दुनिया कार्यक्रम में शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने सुनेंगे गीत संगीत के साथ ही कुछ रोचक जानकारियां।

0: अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी डॉक्टर स्वाति शर्मा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा फल सब्जियों का संरक्षण कैसे करें। फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम गीतांजलि हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। आज की प्रस्तुति होगी आशुतोष की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग सुनिएगा शाम 7:45 पर। अलावा इसके फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 7:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सरकर्दा स्टार्टअप हब में शामिल है और उसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गांवों के नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने खेलों में नौजवानों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने नोट किया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे इकदाम ने इख्तराई और कारोबारी शख्सियत को फरोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से NDA हुकूमत नौजवानों की क्यादत में तरक्की की हौसला अफजाई कर रही है जिससे मुल्क के नौजवानों के एतमाद में इजाफा हुआ है और वो अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रा के रास्ते के साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अकीदतमंदों के महफूज और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़ब है। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने ड्रोन, CCTV कैमरे और जदीद निगरानी के निजाम जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा से वाबस्ता तमाम मकामी लोगों और जानवरों को रजिस्टर्ड किया जाए और QR कोड के साथ शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। वाज़ह है कि श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 39 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से कबल उन्होंने एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत लगाई गई नुमाइश का भी जायजा लिया। दरियासना वजीर आला आज और कल गोरखपुर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। साथ ही बड़हलगंज और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद प्रोग्रामों में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर बनारस में मुनक्किद अवामी बहबूदी कैंप और बहबूदी स्कीमों के फैजियाब अफराद को मंजूरी लेटर तकसीम किए। इस दौरान प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि PM स्वनिधि स्कीम में बनारस के 60,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकर्स की पहली किस्त, 26,800 वेंडर्स को दूसरी किस्त और 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी किस्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तब्दील होते हिन्दुस्तान में इसकी में गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों को मानवन है। उन्होंने कहा,
2: मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरोनी की योजना प्रारंभ की और घरोनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और इस सर्वी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध करवाए मोदी जी ने। 3 करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में अहम तब्दीलियां देखी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर कार फरमा हैं। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मजबूत बनाने

0: के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नजर सानी शुदा औकात 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। नजर सानी शुदा इम्तिहान की मुद्दत में लाजमी इम्तिहान की रस्मी कार्रवाइयों के लिए दरकार वक्त शामिल है। और जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ समेत कर्बोजवार के इजला में तेज हवाओं और कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे अवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है और जायद की फसलों को फायदा हासिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया है। दरियासना, उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगने यह कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोग के नमस्ते और पारो बहन साथे साथे तो के भी नमस्ते।
1: अरे नमस्ते गौरी बहन और सुनने वाली सब बहन लोग के हमार पारो के नमस्ते।
0: तो और बतावा पारो बहन का हाल चाल है। बहुत ज्यादा दिन बाद दिखाई देलू हो तो के देखे खाती कही कि आंख तरस गई रहा है।
1: हाँ गौरी बहन ठीक कहत हूँ, आँख तरस गई रहा का कहीं गौरी बहन, इतना गर्मी पड़त है कि कहीं जाए के समय ना मिला था, समय भी मिला था तो बाहर धूप देख के मन हो जाता, तो कहत है कि हाल चाल तो फोन पर भी हो जाला। हाँ आ देखा गौरी बहन मन करत है कि कब बरखा बुन्नी शुरू होखे, आ ई आसरा हमने के नहीं खींचा लगौले, ई आसरा पेड़ पौधा जीव जंतु आ खुदे धरती मैया भी आसरा लगौले बाड़ी। और गौरी बहन देखा अब तो देखा लड़का बच्चन के स्कूल खुले का भी समझ नजदीक आ रहा है, आ ई लोग नन्हा मुन्नी कुल स्वस्थ खुशहाल रहे इहो कुल ध्यान रखे के बा, कहे से कि स्वास्थ्य अच्छा रही तो पढ़ू में यहाँ लोग के मन लागी, आ हम घर के लोगन के ई जिम्मेदारी होला कि सब केहू स्वस्थ रहे।
0: ई तो एकदम सही बात कहलू हो कि हमनी के जिम्मेदारी होला। और खास करके कह कि अभी जौन स्कूले के बात कैलू है कि अब स्कूल खुले वाला है, तो स्कूल खुले से पहले ई जौन बंद रहा तो जौन उधम मचौले बा लोग घरे में ना, अब समझ कि हालत खराब हो गई बा महतारी लोग के। कभी मम्मी ई बना दा, मम्मी ऊ बना दा, मम्मी नानी घर लेके चला, कहीं पिकनिक में ले चला। अब समझा कि महतारी लोग के और साथे साथे जे घर के और गार्जियन हमें दादा दादी के तो और हालत खराब कैले रहता लोग, दोपहरिया में सुतल बैठल उन लोग के मुश्किल कैले वालों। लेकिन हम कही ना कि देखा ये कुल लैकन का जवन नोक जो खोला ना, ये बड़ा नीक लगेला हो। जब घर में रहे ना सब चहल पहल भइल रहेला, वैसे ही मई जून के जवन महीना होला तो दोपहरिया का जवन समय होला तो ऐसे ही ना कटेला। लेकिन जब घर में लैका उधम मचौले रहे ना तो वही में मन मनसाइन में दिन बीत जाला और ना समझ में आवेला। लेकिन जवन तू बात करत रहू कि अब स्कूल खुले वाला है और उन लोग के स्वास्थ्य का मतलब बहुत ध्यान रखे के जरूरी है ना, तब देखा हो यो समय हो गई ला कि अब उन लोग के जब स्कूल खुल जाई तो सबेरे सबेरे जल्दी उठा, उन लोग के टिफिन द, उन लोग के नाश्ता द, फिर दोपहर खाती और भोजन भी द, तो ऐसा भोजन

0: जंदा जैसे उन लोग के स्वास्थ्य सही रहे।
1: अच्छा, तो ई बात कहत हो कि टिफिन देवे के तह के ज्यादा चिंता बा कि बहिन लोगन के अब सुबह उठ के अपना लड़का बच्चन के टिफिन भी बनावे के खे। तो बहिन एकर चिंता करे के जरूरत नहीं खे, एकर चिंता सरकार भी करत है कि लड़का बच्चन के पोषण सही से मिले, उनके शरीर में हर तरह के पोषक तत्व मिले। आ
0: अच्छा।
1: यही में एगो योजना हवे भारत सरकार।

0: सैनिक का समाज के सेवा करे वाला बनिया।
1: एकदम सही बात कह लुआ हो कि जब लइकन का पेट भरल है तबे उ लोग के दिमाग भी चली और पढ़बो करिया। और हमनी के सरकार तो ये बात की अच्छा से ध्यान रखत है कि मतलब जवन लइकन के खाना दिहल जाता वो भरपूर पौष्टिक से भरल होके, पूरा उनमें विटामिन प्रोटीन जो भी जीवन भी मतलब बच्चन के स्वास्थ्य के सही है, ओकरी स्वास्थ्य में सुधार करी, ओके आगे बढ़े में मदद करी, वो चीज़ का ध्यान रखल जाला। और सबसे खास करके ये ध्यान रखल जाला कि दोपहर के जवन खाना दिहल जाला वो एकदम गरम गरम खाना दिहल जाला। और ई भी ना है कि एक ही खाना एक लगातार हर दिन खिलावल जाता, दिन के हिसाब से खाना भी बदल दिहल जाता। कोनो दिन हरी सब्जी दिया था, कोनो दिन पनीर दिया था, कोनो दिन कढ़ी चावल बन गई। तो इसे देखा जो उन बच्चा हवा ना उ लोग के खाए में भी मन लगी, रोज रोज नया नया बदल बदल के खाना भी मिलत रही। और इसे जवन हमने के शिक्षा स्तर पे कहा कि नामांकन कइल जाता तो कुछ बहुत कम हो जाता,
0: लड़का लोगन के नामांकन बढ़ावे खातिर योजना चलावल गई रहे। एकर शुरुआत प्राथमिक स्तर पर भइल रहे 1995 में, तब एकर नाम रहे मध्याह्न भोजन योजना नाम से शुरुआत भइल। और 2021 में एकर नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर देल गेल।
1: एकदम सही कहलू हो कि लेकिन देखा हम कही ना कि इतना कुल तो सरकार हमनी बदे कई रहल है, तरह तरह की योजना निकालत है कि जे हमनी के नागरिक हमें वो स्वस्थ रहें, वो लोग आगे बढ़े। लेकिन हम कहें कि जो आम आदमी है ओकर भी तो कुछ फर्ज बनेला समाज के निर्माण में कि
0: हाँ,
1: वो
0: हम
1: भी।
0: जानत ही तू का कहल चाहत हो कि हमनों के कुछ फर्ज बनेला कि हमनों के समाज बदे कुछ कैल जाओ। तो यही समाज निर्माण के समाज सेवा की यात्रा में एगो औरी महान काम याद आवत था, तुहु जानत हो का कहल
1: हाँ
0: चाहत हो जा,
1: एकदम सही बात है
0: रक्तदान।
1: ना, रक्तदान महादान।
0: हाँ, तो रक्तदान जो होला वो जरूरतमंद लोगन के नया जिंदगी देवे वाला होला। अस्पताल में देखा कई गो मरीज, दुर्घटना के शिकार लोग, प्रसव के दौरान जो महिला लोग होली, अक्सर समय पर खून ना मिले से संकट में पड़ जाली। तो देखो गौरी बहन, जैसे एक मग पानी से नदी ना सुखाला, वही तरह हमन के सोचे के चाहे कि अगर हमार थोड़ा सा खून कोनो जरूरतमंद आदमी के जीवन बचा सकेला, कोनो परिवार के खुशियाँ लौटा सकेला, तो एके देवे में हमन लोगन के अगर हमार हमनिन के स्वास्थ्य अच्छा बा तो देवे में संकोच ना करे के
1: हाँ
0: चाहिए।
1: कुल
0: आ
1: कहे
0: ऐसे हमन के समाज के प्रति जिम्मेदारी के एहसास भी होला।
1: कुल कहे का मतलब ये हो कि देखा ये जौन खून होला ना, जौन मनई के शरीर में जौन रक्त बनेला, एके कोनो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से ना बनावल जा सकेला। ये मनई के अपन शरीर में खुदे के खाए पिए से बनेला। तो ये दान सबसे बड़ा दान होला। कितना भी तू दान कर ला लेकिन रक्तदान अगर करा तो एकर नामे देखा आदमी कहला कि रक्तदान महादान।
0: हाँ, आ देखो बहुत घर में तो लोग डराए लगन कि हमार खून कम हो जाए। तो देखो रक्तदान करे से स्वस्थ मनई के शरीर पर कोनो बुरा असर ना पड़ेला। आ अगर कोनो आदमी स्वस्थ बा तो शरीर फिर से उतने खून बना लेवेला। आ खून देवे से पहले खून के गुणवत्ता के भी जांच होला, मैं कई तरह के जांच होला जिसे पता चलेला कि शरीर स्वस्थ बा कि ना, तो यो कुल के जांच हो जाला।
1: कुल कुल मिला के कह कि हर तरह के जांच कैला के बाद ही अगर केहू मरीज है तो ओके खून दिहल जाला। आ देखा वो
0: हाँ
1: बात कैल जाई तो बात करते रह जाई जाई, लेकिन बहिन लोग के ये को संदेश सुनवाई दिहल जाए।
0: हाँ बिल्कुल।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
0: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
0: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
4: ओ
6: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
6: 0542227658।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: तो पारो बहिन।

0: हाँ बहन,
1: देखा हो, बात विचार होते रहेला। लेकिन हम कहें कि जो सीजन चल रहा, गर्मी के सीजन चलता है, तो जो नी बाजारे से हमनी के साग सब्जी ले आवा नहीं जाना, वो 1-2 दिन रखा तो बड़ा जल्दी खराब होके लगता। ओके कैसे बचा के रखा, अगर बहरे रखा तो सूखे लगता, अगर तनी पानी में भिगाए दा तो 1-2 दिन के बाद देखा तो सड़े लगता।
0: अरे बात कहत हो गौरी बहन, हमारा घर में तो बाबूजी ले आवे ना इतना कुल साग सब्जी ले आवे लन, अब खाए वाला चार मनई समझे में ना आवेला कि कैसे का करी, रखे रखे सड़हू लागेला। तब एगो
1: यही
0: सोचे के पड़ेला कि एक कैसे रखल जाओ कि सुरक्षित रहे, कैसे कि गर्मी बतावत हो कि गर्मी में जो सूक्ष्म जीव होले वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाले, तो ये सब सड़े गले लागेला। तो यही कुल विषय पर
1: देखा
0: फल और
1: आप।
0: सब्जियों का संरक्षण कैसे करें, ये पर नीके से जानकारी दी हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, जिनसे बतियाओ थी शिखा श्रीवास्तव, तो बहिन लोगे के सुने।
2: श्रोता बहिनी, आज हमारे साथ ही कार्यक्रम में आए हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, और आप लोगन की आज जानकारी दी है कि फल और सब्जियन का संरक्षण हम कैसे कर सकेला। संरक्षण से मतलब का हो, तो सब्जियन और फल का संरक्षण कैसे कर सकेला, ये विषय पर जानकारी दी है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: आप बहनी लोगन के बताएं कि फल और सब्जियन का संरक्षण करल काहे जरूरी।
3: फल एवं सब्जियों का संरक्षण, ये जो आज का हमारा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कुपोषण का जो कारण है सबसे बड़ा है कि हम लोग फल और सब्जी जो मात्रा में हमें खानी चाहिए, 400 ग्राम, 150 ग्राम, 400 ग्राम सब्जियां और 150 ग्राम फल प्रतिदिन हर व्यक्ति को, तो वो हम लोग खाते नहीं है, पर उगाते हैं। हमारे कृषक हैं, हमारी कृषि का जो महिलाएं हैं, बहुत मेहनत से हमारे फल सब्जियों को उगाती हैं, और पर हम लोग जब संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जो इनको प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जो प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ये करेंगे तो उसकी शेल्फ स्टेबिलिटी, यानी कि आप उसको खाने योग्य कितने दिन तक रख सकते हैं, वो आप बढ़ा सकते हैं। जब जो आपकी ताजी सब्जियां या ताजे फलों को 5 दिन, 2 दिन, 2 दिन में कुमला जाती है भिंडी, आपका जो भी फल है अमरूद है खराब हो जाता है, तो इन चीजों को हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक खाने योग्य रख सकते हैं और इनके न्यूट्रिशन को यूज कर सकते हैं, यही संरक्षण है।
2: अच्छा, तो का संरक्षण करले से उनका पोषक तत्व खत्म नहीं होला?
3: पोषक तत्व देखिए खत्म नहीं होता है, हाँ प्रसंस्करण करने से अलग अलग विधि से विटामिन और मिनरल्स पर अलग अलग असर पड़ता है। यही विधि जो है ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कौन सी विधि सबसे अच्छी तरीके से विटामिन्स और मिनरल्स को बनाए रखती है, यही प्रसंस्करण का विषय रहता है।
2: अच्छा, तो जब आप ये विषय पर आवत हैं तब फरिया के बताएं कि कैसे बचावल जाए, कैसे संरक्षित कर जा सकेला।
3: अब जैसे सब्जियों की बात कर लीजिए, इतनी सारी सब्जियां हैं, फल है, अब अगर सेब है, सेब को हम लोग दोनों ही तरीके से, कैसे, फल सालों भर तो टूटता नहीं है सेब, लेकिन सालों भर आपको मिलता है, तो कैसे इसको संरक्षित करते हैं, तो इसको जो कमर्शियल स्टोरेज होता है वो कंट्रोल्ड एटमोस्फियर स्टोरेज में किया जाता है, यानी कि जो वहां की हवा है वो कोल्ड रूम की जो हवा है उसको भी बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाता है। वहां का तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, वहां की हवा में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, CO2 का कंसंट्रेशन है, ये सभी चीजों को मेंटेन किया जाता है। तो ये बात हो गई कि ताजे फलों को कैसे रखते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो आपको सालों भर सेब मिलता है, पियर मिलता है, इन चीजों के लिए। अब अगर बात की जाए कि प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, तो हम प्रसंस्करण करके कैसे रख सकते हैं, तो सेब का आप जैम बना सकते हैं, अमरूद से आप जेली बना सकते हैं। जैसे हरी मिर्च है, आप इसको बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, कोल्ड रूम में भी रखेंगे तो ये गलने लग जाएगी। और मानिए कि हमारे व्यापारी या किसान बंधु जो उगा रहे हैं 100 किलो, 500 किलो, तो आप इसको कितने कोल्ड रूम में रखेंगे, उसके लिए कितनी सारी जगह की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम होगा। कोल्ड रूम में रखेंगे तो तापमान कम रहेगा वहां का, आपको वहां के कोल्ड रूम के चार्जेस देने पड़ेंगे। पर अगर आप इसी को प्रसंस्कृत कर दें, संरक्षित करें, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब कैसे करें, अब हरी मिर्च है, हरी मिर्च का आपने पाउडर बना दिया, करेला है, हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कई सारे उत्पाद बनाए हैं, जैसे आपका करेला से करेला चिप्स है, मोरिंगा यानी कि सहजन है, तो सहजन से बिस्किट कैसे आप बना सकते हैं,
2: सहजन का बिस्किट
3: जी। तो सहजन जैसे उसका पॉड होता है, जो फली होती है, जो पत्ते होते हैं, काफी पोषण होता है इनमें, कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, फाइबर अच्छा होता है, और भी बाकी विटामिन्स, विटामिन ए अच्छा होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो इन सभी पोषक तत्वों को हम लोग कैसे

0: आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग जानते तो हैं कि पत्तियों में बहुत पोषण होता है, पर अगर बच्चे को साग खिलाएंगे तो शायद वो ना खाए। तो संरक्षित करके कई तरह के उत्पाद हम लोग बना सकते हैं। अब सहजन का ही देखिए तो इंस्टेंट मोरिंगा ड्रिंक मिक्स, इंस्टेंट मोरिंगा सूप मिक्स और मोरिंगा कुकीज, इस तरह के कई सारे उत्पाद हमारे संस्थान ने भी विकसित किए हैं। फिर हरी मिर्च का पाउडर है, करेला का चिप्स है, तो ये सभी उत्पाद हम लोग बना सकते हैं। इसके फलों में अगर आप बात करेंगी तो जैम है, जेल, तमाम तरह के उत्पाद हैं। टमाटर है, उसका सॉस है, केचप है, जूस है, सूप है, इन सब तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं।
1: अब जैसे मान ली आप कहली ना कि मर्चा हरियर जौन होकर पाउडर बनावे के, तो ओकर अगर पाउडर बनावे की हुई तो के सुखावे का भी विधि दूसरा भाई घरवा में जब हम लोग बनाईला तो के सुखवावत सुखवावत लाल हो जाएला, हाँ, तो वो हरियर से लाल मिर्चा का पाउडर हो जाएला, तो एक कैसे बना।
0: बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और ये वैसा सवाल है जो किसी व्यक्ति ने जो किया हो और वो तब पूछ रहा हो, तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कि एक तो है कि अगर हमें हरी मिर्च का पाउडर बनाना है तो इसकी जो विधि विकसित की है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने, इसको इस बात के लिए पेटेंट भी मिला है, तो जो विधि है उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब इसमें क्या है, देखिए तकनीक होती है बहुत सारी, मशीनें अलग होती हैं। अगर हम लोग जैसे आप कह रही हैं तो वो ब्राउन भी हो जाता है, अगर आप हरी मिर्च भी लेंगी और उसको सुखाएंगी तो वो ब्राउन हो जाएगी अक्सर। तो हरी मिर्च का हरा रंग बना रहे उसके लिए हमें क्या करना है, पीएच स्टेबिलाइजर्स डालने हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालनी है, उनको किस तापमान पे सुखाना है, किस तरह से ब्लांचिंग करनी है, यही तकनीक है। और दूसरी बात, जो आप लाल की बात कह रही थी, तो सॉर्टिंग करना जरूरी है, मतलब ग्रीन और रेड, और वो उतनी जल्दी अगर सूख जाएगी तो उसको लाल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब हम लोग ब्लांचिंग करके उसको ड्राइंग में मशीन में लगाएंगे तो वो तब तक सूख जाएगी, लाल नहीं हो पाएगी। अब इसी सॉर्टिंग पर एक और बात अगर की जाए, जैसे टमाटर का सॉस है, मान लीजिए महिलाएं बना रही हैं, घर में बना रही हैं, बाजार में विपणन के लिए बनाएं, तब तो आपको और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे मानक क्या है, कितनी जो परिरक्षण के लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं वो कितनी मात्रा में मिलानी है, कौन सी मिलानी है। जैसे अगर फ्रूट का जैम है तो हमें 40 ppm मिलानी है, यानी 40 मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम बहुत ही कम मात्रा होती है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हमें जैम बनाना है, पर अगर हमें मान लीजिए टमाटर का सॉस बनाना है, उसमें परिरक्षण जो करना है वो प्रिजर्वेटिव बदल जाएगा, उसकी मात्रा भी बदल जाएगी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब फिर बहुत छोटी सी बात है कि सॉर्टिंग, जैसे आपने कलर की जब बात की, तो अब जैसे अगर आप टमाटर का सॉस बना रही है, आपने सब विधि अच्छी की, पर आपने उसमें कुछ हरे टमाटर और गुलाबी टमाटर का भी उपयोग कर लिया कि चलो 10 किलो में 4-5 हरा है तो इसको अलग क्या करना, इसको भी बना लिया जाए। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो सॉस बनने के बाद वो कभी कभी ब्राउन हो जाता है, क्योंकि हमने उसमें हरे टमाटर भी डाल दिए थे, तो आपका रंग जो है वो निखर के नहीं आएगा, लाल प्रोडक्ट आपका ब्राउन हो जाएगा, तो आपकी पूरी ही जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स भी बोलते हैं, परिरक्षण किस केमिकल से करना है, कितनी मात्रा में डालनी है, कब डालनी है। जैसे अगर हमें कोई बोला गया कि दवाई डालनी है, तो वो दवाई हमें कब डाल देनी है, शुरू में ही डाल देनी है जब हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, या बीच में डालनी है, या अंत में डालनी है, ये भी बहुत जरूरी है। फिर अगर आपको पैकेजिंग करना है तो गर्म गर्म भरना है या ठंडा करके भरना है, बातें बहुत छोटी सी हैं, पर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता नहीं अच्छी आएगी।
1: अच्छा, तो ये बताइए, इतना आप बतौली ना कि आपके संस्थान में इस तरह से होता, अगर केहू घरे में संरक्षित रखल चाहा था कोनो चीज के, तो ओके कैसे करे, जैसे जैम है, जेली है, चाहे चटनी का बात कैली है, और सॉस का बात कैली है, और स्क्वैश होला एक जो उसे जूस से बनेला, तो ई कुल अगर घरे में बनावल चाहे संरक्षित करल चाहे बहनी लोगन तक ना कर सकेंगे।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, ये सभी जो इनका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और महिलाओं के लिए ही डेवलप किया गया है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि इन्हें रुचि भी कुकिंग में ज्यादा रहती है, तो ये सभी उत्पाद आप घर में बना सकते हैं। जैसे आपने स्क्वैश, जैम, जेली बोला, सब आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक डिहाइड्रेशन हम लोग बोलते हैं, यानी निर्जलीकरण बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा भी सोलर ड्रायर हो।
1: अच्छा,
0: सोलर ड्रायर, एनर्जी भी नहीं लगेगी, पर अगर हम लोग जब खुले में सुखाते हैं धूप में, तो उसमें कई बार माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, तापमान ठीक नहीं मिलता है, धूप मिट्टी आती है, तो उसकी वजह से संक्रमण

0: होने का चांसेस भी रहता है, ठीक से सूख भी नहीं पाती। पर अगर हम लोग सोलर ड्रायर में सुखाएं या फिर हाइब्रिड ड्रायर्स, जैसे हाइब्रिड ड्रायर्स मतलब क्या, जैसे बिजली पे भी चल जाए और अपने सोलर एनर्जी से भी चल जाए, तो उस तरह के ड्रायर का अगर हम लोग उपयोग करेंगे, अगर 10 महिलाओं का एक ग्रुप हो और हम लोग डिहाइड्रेशन करके रखें, तो बहुत ही अच्छा उपयोगी है ये। जैसे आपकी फूल गोभी जब सीजन में होती है, और घरों में पहले सुखौता बनता था, तो सुखौता अगर किसी को ध्यान हो तो कभी रंग उसका खराब होने लगता है, ब्राउन होने लगता है, काला पड़ने लगता है, फंगस लग जाता है, थोड़ा स्मेल आ जाता है। तो ये इन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं, यही सब हमें जानने की जरूरत है। अब जैसे अगर आप यही सुखौता तकनीकी विधि से बनाएंगे तो आपका ये खराब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने संस्थान में इस चीज के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। फूल गोभी का सुखौता हम लोग बनाते हैं, अपने संस्थान में रखते हैं, एक साल तक उसका कोई रंग खराब नहीं होता है। तो अगर कोई बहन बिजनेस भी करना चाहे, उत्पाद को बनाकर रखना चाहे, तो बहुत ही आसान विधि है। फूल गोभी का सुखौता आप बना सकते हैं, बना के उसको अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, 6 महीना 8 महीना 1 साल तक उसको बेच सकते हैं। तो ये छोटी बातें हैं, छोटी चीजें हैं, जिसको सीखकर हम लोग अपने आप को संरक्षित भी कर सकते हैं फल एवं सब्जियों को, और उसका जो पोषण से मिलने वाले जो लाभ है वो भी ले सकते हैं।
1: अच्छा, आप जब सीखे सिखावे का बात कर रहे थे तो लगले हाथ बताई दें कि अगर सीखे के है, प्रशिक्षण लेवे के है, तब कहाँ से लें और कितना दिन का लेवे के हो?
0: प्रसंस्कृत जो उत्पाद है ये कई तरह के हैं, और हर फल या हर सब्जी से बहुत तरह के उत्पाद बन जाते हैं। जैसे आप बाजार में जाते होंगे तो आप देखते होंगे हरी मटर भी बिक रही है आजकल, तो वो जो उत्पाद है आप देखेंगे इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन, यानी कि वो मटर जो है वो फ्रीज किए हुए रहते हैं, फ्रीज फ्रोज डब्बे में रहते हैं। तो कई तरह के उत्पाद हैं, तो आपको ट्रेनिंग किस चीज में चाहिए, आप क्या बनाना चाहती हैं, और ये सब अगर आप थोड़ा सा सोच कर हमारे पास आए तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: अच्छा, तो आप बताएं कि आपके संस्थान में कौन कौन तरह का प्रसंस्कृत उत्पाद बनावल जाता है?
0: देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में सब्जियों के ऊपर शोध होता है, और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उन सभी पर हम लोग नित नए नए उत्पाद बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और प्रशिक्षण के लिए आप में से कोई भी महिला, कोई भी कृषक भाई, जो भी आगे आना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये शुल्क भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ हमारे निदेशक, आप उनको एक चिट्ठी लिखें, ईमेल करें, और आप अपनी बताएं कि हम लोग प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके पहले भी हम लोगों ने दिया है।
1: अच्छा, कितना दिन का दी है?
0: 3 दिन का हम लोग रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा करने पे लोगों का ध्यान भी उतना शायद ना रहे, तो 3 दिन की ट्रेनिंग अच्छी रहती है।
1: अच्छा, एक घड़ी कौन कौन उत्पाद के संरक्षित कर जाता?
0: अभी देखिए, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी आपका करेला है, तो आप करेला का चिप्स बना सकते हैं। करेला का चिप्स बनाकर आप उसको अच्छे से प्रसंस्कृत करें, उसको आप रखें। डिहाइड्रेटेड जैसे भिंडी है, तो अगर इस मौसम में आप भिंडी को प्रसंस्कृत करके रख सकते हैं, भिंडी मुश्किल से 2 दिन रह जाती है, अगर आप उसको सुखा के रखें तो उसका रंग भी खराब नहीं होता है, आप उसको 1 साल तक रख सकते हैं। किसी भी सूप में, किसी भी सब्जी में, किसी उसको भूज कर आप उसको आराम से भुजिया बनाकर खा सकते हैं।
1: देखिए, हम आपके रोकल चाहब, हम आपसे पूछ ली जैम जेली चटनी मुरब्बा सब के बारे में, लेकिन अचार के बारे में हम ना पूछ ली है। अचार भी तो सुरक्षित करेला संरक्षित?
0: बिल्कुल बिल्कुल, अचार बिल्कुल करता है। इसके अलावा मेरे 2 नाम और आ गए मुझे ध्यान में, कुम्हड़ा जो है, कुम्हड़ा कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, कद्दू भी कई बार बोलते हैं, उसका आप इंस्टेंट एक पम्पकिन हलवा मिक्स भी बना है, लौकी खीर मिक्स भी बनाया है हमारे संस्थान से।
1: कैंडी वैंडी ना बनेला?
0: कैंडी भी बनती है, पर अभी जो ये इंस्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो ये आप क्या करेंगे, इसको फ्रीज ड्राइंग करके कंपोजिशन है, और आप इसको तुती है, वैसे आप इसको बनाकर उपयोग कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी आप जानकारी दे थी, बहनी लोगन ध्यान से सुनत थे, और जो आप जगह बतौलिन है जरूर आपसे संपर्क करिए। अगर जे भी केहू व्यापार के दृष्टिकोण से, चाहे अपने घरे में संरक्षित करे का बात अगर सोचा था, तो ये विधि से संरक्षित करिए, आपके यहाँ प्रशिक्षण लेवे जाए। डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में एलिन, और फल और सब्जियन का संरक्षण कैसे कर जाए ये विषय पर इतना महत्वपूर्ण जानकारी देलिन, एकरे बदे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पारो बहिन, हाँ देखा बहिन। हो कितना नीके के जानकारी रहला, फल और सब्जियों का संरक्षण कैसे करें जेकरे बारे में बतौनी है डॉक्टर स्वाति शर्मा, और हमनी के बहिन शिखा श्रीवास्तव बहिन बतियावत रही। और हम कही ना कि जौन तू अबे कहत रलुआ कि हमार बाबू इतना सब्जी लिया देना या चारे गो मनई बानी जा, तो अब तो के एक उपाय

0: मिल गई हुई कि कैसे करबू कि तोहर सब्जी भी ना खराब होई, ज्यादा दिन चले और बाबू के हरियर हरी सब्जी रोज बना बना खेबू तो वो खुश रही हैं।
1: हाँ बिल्कुल वही ना, देखा हो एक कुल हम वातन में हमनी के भुला जाइले कि अब गीत मनसाइन के भी समय हो रहल बा। तो देखो जेठ के समय चलत है, तो बहिन लोग है जेठ के गाना सुने गीत सुने।

0: गौरी बहिन, तो गीत गौनाई तो हो गेल बहिन, अब का कहत हो, समय भी हो रहल है जाए के, तो और ही कुछ बहिन लोगन से कुछ बतावे को तो बतावा।
1: अरे ना बहिन, हमार कहे के मतलब

0: मतलब यह कि देखा समय जवन है गर्मी के चला था और बाजारे में बड़ा फल फूल मिला था। वो देखा तरह तरह के आम मिला था, लीची मिला था, यही में फालसा मिला था। तो ये कि
1: तार
0: अपन
1: झोलिया तब से महकत रहल, हम कहत रहनी कि कुछ लाइल बाड़ू।
0: तो एक बहन लोग अपन खरीदे खाए और सेहत का ध्यान रखें। और देखा हो जैसे आवेनी जब वैसे ही जाए के भी
1: हाँ
0: समय हो जाला तो चला अब चली जा,
1: कहल
0: कहीं जा
1: जा नमस्ते।
0: नमस्ते।

ग्रामीण बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सुरभि सिंह। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में यात्रा गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सुरभि सिंह। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में लचारी।

0: A U.S. Navy strikes an oil ship in the Gulf, killing three Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of three series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ।

0: 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
1: इन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर, कोरेजस, डिसीजन मेकर एंड एथिकल लीडर।
0: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कम्पेयर्ड प्रोग्राम गीतांजलि। आज की प्रस्तुति है आशुतोष की।

गीतांजलि सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता, और जब किसी की सच्चे दिल से तारीफ की जाए तो सुनने वाले को भी सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। की जा सकती है तो सिर्फ तारीफ, और वो तारीफ भी जब महबूब की हो तब तो बात ही कुछ और होती है।

फिजाओं में रंग बिखेरे तुम्हारा चांद सा चेहरा, हमें बेचैन कर जाए तुम्हारा चांद सा चेहरा। मेरी खातिर समरता है तुम्हारा चांद सा चेहरा, जी में आए कि छू लूं तुम्हारा चांद सा चेहरा।

वो अपने चेहरे में 100 आफताब रखते हैं, इसीलिए तो अपनी रूह पर नकाब रखते हैं। वो पास बैठे हो तो आती है दिलरुबा खुशबू, वो अपने होठों पर खिलते गुलाब रखते हैं।

जो कागज पर लिख दूं तारीफ तुम्हारी, जो कागज पर लिख दूं तारीफ तुम्हारी, तो स्याही भी तेरे हुस्न की गुलाम हो जाए।

या इन्हें क्या दे सकेंगे तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, कभी हमारी आंखों से पूछ कर देखो कितने लाजवाब हो तुम।

आसमां में खलबली है, सब यही पूछ रहे हैं, कौन फिरता है जमी पर चांद सी सूरत लिए हुए।

तुम गुजार ही लोगे जिंदगी, हर फन में माहिर हो, पर मुझे कुछ नहीं आता तुम्हें चाहने के सिवा।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज की गीतांजलि अब यहीं संपन्न होती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। अब दीजिए अपने रेडियो मित्र आशुतोष को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम गीतांजलि, प्रस्तुति आशुतोष की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:10 पर। आज आप सुनेंगे इसकी 13वीं कड़ी। डॉक्टर रमा सेन की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे। और स्वरबेला कार्यक्रम में आज सुनिएगा महेंद्रनाथ तिवारी का काव्य पाठ। प्रसारण समय होगा शाम 7:31। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:14 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 5 बजे सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTA DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। जय हिंद पूजा दीदी।
1: जय हिंद सुखदा दीदी।
0: कैसी हैं आप
1: दीदी? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और दीदी देखिए ना, गर्मी की छुट्टियां हैं तो हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं वो अपने नानी के घर, कोई दादी के घर गया होगा और खूब सारी मौज मस्ती तो हो ही रही होगी।
0: बिल्कुल हो रही होगी। और हमारे बच्चे भी इन छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे।
1: हाँ, और जो हॉलीडे होमवर्क मिला होगा ना दीदी, वो तो किसी ने बहुत पहले ही खत्म कर ली होगी और कोई छुट्टियों के बाद फिर मम्मी की डांट पापा की डांट सुन के खत्म करेगा।
0: भी करना तो है ही है, चाहे आज करे चाहे कल करे।

0: तो हमारे जो नन्हे साथी हैं कुछ तो ये सोचते होंगे कि जल्दी से करके खत्म करते हैं, और कुछ अरे कल कर लेंगे, अभी तो छुट्टियों के दिन बाकी ही
1: हाँ,
0: है।
1: और कल कल के चक्कर में ये छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। दीदी देखिए ना, नानी का घर हो, दादी का घर हो ना, कितना अच्छा लगता है। जब हम और आप जब छोटे थे तो जब नानी और दादी के घर जाते थे तो खूब सारी मस्ती करते थे। मतलब खूब सारे, मतलब अलग अलग तरीके जो खाने होते थे, चाट है, पकौड़ियां है, जो मम्मी खाने के लिए मना करती थी ना, वही हमारी दादी नानी हम सबको खिलाती थी। क्यों?
0: बिल्कुल भाई, एक जो बड़ा सा परिवार होता था और सब लोग मिलजुल के हम लोग एंजॉय करते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जहाँ देखा जाए दीदी, तो ये जो परिवार शब्द है ना, ये हमारी पहली पाठशाला है।
1: हाँ,
0: यहीं से तो हम सीखते हैं कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है, और ये हमारे भैया है, हमारी दीदी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी, मतलब बहुत सारे जो हमारे रिश्तों की जो शुरुआत होती है वो हमारे परिवार से ही होती है। और हमारा परिवार जो होता है ना, वो सबसे बड़ी पाठशाला होती है हमारे जीवन की, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी भरपूर मदद करती है।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी। हमारा जो परिवार होता है ना, वो पाठशाला तो है ही, साथ ही हमारी सुरक्षा का भी एक घर है। जैसे कभी हमें छोटा सा भी चोट लग जाए तो कभी दादी दौड़ के आ जाती हैं, कभी नानी दौड़ के आ जाती हैं कि अरे कहाँ लग गया, कैसे लग गया। वो हमें दवा लगाएंगी, हमें प्यार से सहलाएंगी, समझाएंगी कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो चोट लग जाएगा। तो ये परिवार ही है बच्चों, जो हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। और परिवार नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो परिवार होता है वो हमारे जीवन का आधार होता है, क्योंकि परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और अन्य जो रिश्ते होते हैं वो सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं। एक इंसान का परिवार उसके लिए संसार होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं।
1: और यही जिम्मेदारी नन्हे मुन्ने साथी हमें धीरे धीरे धीरे बड़ा करती है। आज जैसे हमारे पापा जिम्मेदार है कि हमें उन्हें घर संभालना है, वैसे जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको भी बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे घर के काम है, बाहर के काम है, तो ये भी दीदी एक जिम्मेदारी ही है ना।
0: बिल्कुल, परिवार में रह के हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना दीदी? जैसे उठना, बैठना, कपड़े पहनना, किसी से बात करना। तो परिवार की जो सबसे अहम हमारे लिए होती है हमारी माँ,
1: हाँ,
0: वो हमें सिखाती हैं कि बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे बैठो, यहाँ नहीं जाना चाहिए, हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, स्पेशली बाहर के जो लोग होते
1: हाँ
0: हैं, जैसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कहते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि चलो तुमको चॉकलेट खिला के लाते
1: हाँ
0: हैं,
1: तो तुरंत तैयार हो जाते हैं जाने के
0: हाँ,
1: लिए।
0: तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, हमारे जो परिवार के मुखिया होते हैं, अगर वो हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए भी।
1: और दीदी परिवार में ही तो हम सीखते हैं ना, हमारे नन्हे मुन्ने साथी सीखते हैं कि हमें कैसे सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का। अगर हम उनकी सहयोग करेंगे तो हमारी भी कोई सहयोग करेगा। और जन्मदिन हो, त्योहार हो, सब मिल के मनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमें बड़ों का आदर भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दीदी, जब भी अगर हमारे बड़े कहें कि आपको यहाँ नहीं जाना है, ये सामान नहीं छूना है, तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और दीदी साथ ही साथ जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब वो बाजार जाते हैं मम्मी के साथ तो क्या करते हैं दीदी वो?
0: अरे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए,
1: हाँ
0: भाई ये तो बहुत करते हैं, और नहीं दो ना तो वहीं पे बैठ
1: वहीं पे
0: जाएंगे।
1: बैठ जाते हैं, तो ये तो बहुत गंदी वाली आदत हो जाती है नन्हे मुन्ने साथी। छह बच्चों की तरह जब भी बाजार जाएं तो मम्मी के साथ जिद ना करें, कहें कि हमें मुझे ये दिला दीजिए, मुझे ये अच्छा लगता है। अब ये कहिए कि दुकान के सामने बैठ जाएं, मुझे यही चाहिए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता।
0: अगर मम्मी बोल रही है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो उनसे बहस मत कीजिए बच्चों कि नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए, है ना, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन दीदी देखिए, हम लोग बच्चों से बातें कर रहे हैं और बच्चे ध्यान से सुन भी रहे हैं कि
1: हाँ
0: हम उनसे क्या बातें कर रहे हैं, और तो क्यों ना अपने बच्चों को, जैसे वो ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं हर एक चीज को, लेकिन अगर वही अगर हम लोग उनको प्यार से एक सुंदर सा गीत भी सुनवा दे तो बच्चे और भी खुश हो जाएंगे।
1: हाँ

0: दीदी देखिए, यहाँ तो हमने अपने बच्चे को गाना भी सुना दिया और हमारे बच्चे भी बड़े खुश हो गए और नाचने भी लगे हैं गाना सुन के, है ना। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना हमें जब तरह तरह की जानकारियाँ इधर उधर से मिलती हैं, और उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाता है और वो पूछते हैं कोई सवाल और वो हमें पता होता है।
1: हाँ, तब तो आंसर देने में बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत आनंद आता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और वो जो मेहमान आए होते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई वाह, आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, इतनी जानकारी है उसे। लेकिन यहाँ आज हमारी रोचक दीदी के पिटारे में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं।
2: बच्चों नमस्ते, रोचक दीदी आ गई है अपनी जानकारियों का पिटारा लेकर। बच्चों, अगर हम कहें कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अब बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि दीदी भला बंद आंखों से कौन देख सकता है ना। लेकिन आपको एक रोचक बात बताते हैं कि सरीसृप प्रजाति में स्किंक नामक जीव जो छिपकली परिवार में शामिल है, वो अपनी बंद आंखों से भी देख सकता है। जरा सोचिए तो। वैसे ये जो स्किंक होते हैं, ये थोड़े शर्मीले होते हैं, अपने छोटे छोटे पतले पैरों, लचीले

0: शरीर और बेहद चिकनी त्वचा के कारण ये बड़ा तेज भागते हैं। दरअसल इनकी आंखों पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, तो जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं तो उस पारदर्शी झिल्ली से ये देख पाते हैं। है ना मजेदार बात? काश हम भी ऐसा कर पाते। खैर,
1: आज रोचक दीदी अपना पिटारा यहीं समेटेगी और अगले हफ्ते फिर कोई नई बात लेकर आएगी आपके लिए। बच्चों, अब करते हैं बाय बाय।
2: हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को रोचक दीदी से कितनी सारी जानकारियां मिली। और बच्चों देखिए, धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां जो है ना खत्म हो रही हैं, मतलब आपका स्कूल जो है अब वो खुलने ही वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कंप्लीट कर ले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत निराश होंगे कि अरे गर्मी की छुट्टी तो खत्म हो गई, अब क्या करें, अब फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, छुट्टियां तो मिलेंगी, हर साल गर्मी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अपने आसपास की चीजों पे भी ध्यान देना है। और जो बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ों का बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें छोड़नी होंगी। क्यों दीदी?
3: बिल्कुल, बड़ों की बात मानिए। जैसे खाना खाने के बाद मम्मी ने कहा चलो टेबल लगा दो, पानी लेके आओ, तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, बड़ी प्यारी लगती हैं जब बच्चे करते हैं, है ना दीदी? तो दैनिक कार्य जो आपके खुद के हैं, जैसे कि खुद से ब्रश करना, खुद से अपने बाल संवारना, खुद से कपड़े पहनना और खुद से साफ सफाई करना, है ना, अपने शूज को, अपने बैग्स को, अपनी बुक्स वगैरह को सही जगह पे रखना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों, ये बहुत काम आएगी आपकी जिंदगी में।
2: और दीदी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर कभी कोई मेहमान आ जाए तो वो धीरे से निकल जाते हैं, मतलब वो छिप जाते हैं, उनको अब घर में जो गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके सामने नहीं आना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं कि अरे मुझे नहीं जाना है, लेकिन बच्चों वो आपसे मिलने भी तो आए हैं, और जब तक वो रहेंगे तब तक नहीं आते हैं, तो ये एक तरह का बैड मैनर होता है। क्यों दीदी?
3: और अगर मम्मी पापा किसी बात को लेकर अगर आपको डांट रहे हैं तो उसका बुरा मत मानिए, या फिर पलट कर जवाब न दीजिए, क्योंकि ये भी अनैतिकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
2: कि आपके अंदर अच्छी समझ नहीं है, अपने माता पिता का आदर नहीं करते।
3: लेकिन दीदी देखिए, अब तो घड़ी भी टिक टिक कर रही है और कह रही है दीदी लोग अब चलने का समय हो गया है, तो बच्चों निराश मत होइए, हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपनी रेडियो दोस्त सुखदा
2: और पूजा को
3: दीजिए अनुमति। बच्चों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: सपनों को हकीकत बनाने का इरादा रखो, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूरज बनने का वादा रखो।
1: शाम के सुनहरे रंग और ताजगी भरी हवाओं के साथ आप सबका स्वागत है हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम में, जहां आज आपके साथ हूं मैं शिवानी
0: और मैं दिव्या। आप सबको हमारा नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: हाँ जी, तो दिव्या जी, दोस्तों का स्वागत हो गया, मनोरंजन के लिए गीत भी हो गया, तो अब जानकारियों का सिलसिला शुरू किया जाए।
6: बिल्कुल।
5: तो आज हम क्या बताने वाले हैं?
6: आज हम बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। तो दोस्तों, समाज और मजबूत तब बनता है जब उसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर दोनों मिले।
5: बिल्कुल।
6: आज के इस विशेष अवसर पर हम एक ऐसे ही विषय में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में।
5: दोस्तों, आज 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस

0: निम्न से प्रभावित लोगों के अधिकारों, गरिमा और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन की कमी के कारण उसमें उसका निर्माण सामान्य से कम या फिर बिल्कुल नहीं होता है। इसके कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों का रंग हल्का दिखाई देता है और कई बार दृष्टि संबंधी समस्याएं भी होने लगती है। और दुर्भाग्यवश जानकारी के कमी होने के कारण एल्बिनिज्म से प्रभावित जो लोग होते हैं उनको सामाजिक भेदभाव, पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं के सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी शारीरिक विशेषताएं कैसी भी हों, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसरों का अधिकार

0: विशेषताएं कैसी भी हों, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसरों का अधिकार तो उसे भी है। समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है दोस्तों, जब हम विविधताओं को स्वीकार करें और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानें। एल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, और न ही यह किसी प्रकार की कमजोरी का प्रतीक है। सही जानकारी, संवेदनशीलता और सहयोग के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को साकार कर सकें।
1: तो दोस्तों चलिए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर हम ये निश्चय करेंगे कि जागरूकता फैलाएंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और समानता, सम्मान और समावेशिता के मूल्यों को बढ़ावा देंगे। ये ही एक संवेदनशील और प्रगतिशील समाज की पहचान भी तो है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हम जो आज आपको बातें ये बता रहे थे वो आपको समझ आई होंगी और इस विषय में आपको जो जानकारी नहीं थी वो भी हम दे पाए होंगे। तो चर्चाएं बहुत सी हैं, जानकारियां बहुत सी हैं, लेकिन अभी चलते हैं मनोरंजन के सफर पर।

0: दिव्या जी, आज आपने जो बातें हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को बताई हैं, अब उतनी जानकारी के बाद आगे भी बढ़ा जाए और
1: बिल्कुल
0: कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो जाएं,
1: बिल्कुल
0: और वो बात हो जाए जिसके लिए हमारे दोस्तों को डायरी और पेन की जरूरत पड़ती है।
1: हाँ, यानी कि हमारी यू डायरी।
0: बिल्कुल समझदार हैं आप। तो चलिए दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम में आपके शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने का। तो दोस्तों, आज की हमारी यूथ डायरी का जो नया शब्द हिंदी का है वो है परिस्थिति विज्ञान। दोस्तों, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। यह सभी जीवित प्राणियों यानी जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम मनुष्य का उनके प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और तापमान के साथ होने वाले आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और अगर इसका वाक्य में प्रयोग किया जाए तो कुछ यूं हो सकता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को समझना है, इसलिए हमें पारिस्थितिकी का अध्ययन करना चाहिए।
1: और इसी के साथ हमारा जो आज का इंग्लिश वर्ड है वो है मैलिशियस, जिसकी स्पेलिंग है MALICIOUS, मैलिशियस, जिसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण या फिर हानि पहुंचाने वाली या फिर किसी बुरे भावना से किया गया कोई काम। सम सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कुड बी हार्मफुल, स्पाइटफुल, मेलोवेलेंट और हॉस्टाइल। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि ही स्प्रेड मैलिशियस रूमर्स अबाउट हिज क्लासमेट, और वी कैन से इट एज द वेबसाइट वॉज अटैक्ड बाय मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के ये जो दो शब्द है, यानी परिस्थिति विज्ञान और मैलिशियस, इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ आया होगा और आपने इसको नोट भी किया होगा, जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इससे पहले कि आगे और बातचीत हो दिव्या, उससे पहले जान लेते हैं विजेताओं के नाम।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल किया था कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिसका सही जवाब था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जिन लोगों ने ये सही जवाब दिया है उनके नाम हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकीश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार। और इसी के साथ दोस्तों, हमारे अगले जो विजेता हैं वो हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से रवि मौर्य,
1: और चंदौली से है चंदा, और मुकेश कुमार प्रजापति हैं सिग्रा वाराणसी से। तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। और चलिए इसी के साथ जानते हैं हमारा आज का सवाल, और वो ये है कि किस शहर में लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने सड़क संकेतकों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है। हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, किस शहर में लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने सड़क संकेतकों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है। तो फटाफट से हमारी इंस्टा ID youth AIR वाराणसी या फिर हमारी ईमेल ID youth AIR VNS@gmail.com पर जाइए, अपना आंसर भेजिए और हमारे कल के विजेताओं की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कीजिए।
0: बिल्कुल, चलो भाई दिव्या, विजेताओं की तो बात हो गई, अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो हमसे दिल से बात करते हैं और दिल खोल के बात करते हैं।
1: बिल्कुल, और हमसे जुड़ते हैं, कॉल करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और अपनी फरमाइशी गीत भी सुनते हैं।
0: वैसे इस बार हमने अपने दोस्तों से यूथ जंक्शन यानी कि अपने फोन इन कार्यक्रम में किस विषय पर बात की थी?
1: हमारा टॉपिक ना बहुत ही शानदार, बहुत ही रोचक था। वो था कि हमारी ऐसी कौन सी आदत है जो हम बदलना चाहते हैं।
0: तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो चलो हम भी सुनते हैं और दोस्तों को भी सुनाते हैं
1: और उनके फरमाइशी गीत भी पूरी कर लेते हैं।
0: तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे यूथ जंक्शन के आज के सफर पर।
1: हेलो, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में, अपना नाम बताइए।
2: नंदिनी सिंह।
1: अच्छा नंदिनी, आप क्या करती हैं?
2: मैं UP कॉलेज में BA की

0: रहा हूँ।
1: अच्छा, और क्या सब्जेक्ट आप पढ़ रही हैं?
0: पॉलिटिकल साइंस और एंशियंट हिस्ट्री।
1: ओके, तो आप आगे जाके क्या करना चाहती हैं, क्या एम है आपका?
0: मैं आगे जाके सक्षम वकील बनना चाहती हूँ।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, जो आप चाहती हैं वो आपको हासिल हो। नंदनी, हमारा जो आज का विषय है वो है एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहती हैं, तो आप बताइए आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहती हैं?
0: मैं अपने आलस को छोड़ना चाहती हूँ। जैसे किसी भी काम को करने में बहुत देरी हो जाती है या कभी करके टाल देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी काम छूट जाते हैं, दिक्कत होती है उससे।
1: ये तो है, ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि बहुत सारे युवाओं की यही समस्या है, उनके अंदर आलस थोड़ा भरा हुआ है, और आलस की वजह से अपने काफी सारे काम वो छोड़ देते हैं या कल पे टाल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप अपनी आलस को छोड़ना चाहती हैं। अपने आलस को छोड़ने के लिए आप क्या करती हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे आपका आलस छूट जाए?
0: हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने किसी काम को, हमें पता है कि वो करना है हमें, तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में जितना सोचते हैं फिर वो उतना ही ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। लगता है कि अरे वो तो बहुत बड़ा काम है, तो सोचने से अच्छा है कि सीधा ही उसको कर लिया जाए।
1: और एक ये भी कर सकते हैं कि आलस ना करके अपने आलस को अपने माइंड पे हावी ना होने दें, जो चीज करनी है वो चीज तुरंत काम खत्म करके फिर आराम से बैठे।
0: आलस को कम करने के लिए इंसान का चुस्ती भी बहुत जरूरी होती है, उसके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कई बार व्यायाम भी करना चाहिए ताकि हम तुरंत सारे अपने काम कर पाए।
1: और खाने पीने का भी कुछ असर होता है क्या हमारे आलस पे?
0: जी, अगर आप शक्कर ज्यादा लेते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से नींद जैसा भी एहसास होता है। हम चीनी छोड़ सकते हैं, चावल छोड़ सकते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत, ताकि कि आलस कम हो।
1: चलिए, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना आलस जल्दी ही छोड़ पाएंगी।
0: थैंक यू।
1: तो आप ये बताइए कि आप अपनी फरमाइश की कौन सी गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी, मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम सुनना चाहूंगी।
1: ठीक है नंदिनी, आपको आपकी फरमाइश की गीत जरूर सुनवाई जाएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: हेलो, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया सिंह है।
0: सिया, आप क्या करती हैं?
1: हम भी पढ़ाई करते हैं, बैचलर्स की डिग्री ले रहे हैं।
0: अच्छा, और क्या सब्जेक्ट है आपका?
1: इंग्लिश, एंशियंट हिस्ट्री और डिफेंस।
0: ओके, तो सिया, हमारा जो आज का विषय है वो है एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहती हैं। हमारे साथ जनरली ऐसा होता है कि हमारे बहुत सी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, तो कुछ ऐसी आदत जरूर होती है जो हम चाहते तो हैं बदलना, कोशिश भी कभी कभी करते हैं और कभी कभी कोशिश नहीं भी कर पाते हैं या फिर नहीं बदल पाते हैं। तो आप बताइए, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहती हैं?
1: अगर हमें अपनी कोई एक आदत बदलनी हो तो हम ज्यादा मीठा खाने की आदत बदलना चाहेंगे। जैसे कि हमें चॉकलेट और स्वीट्स बहुत पसंद है, कभी कभी बिना मीठा खाए मेरा दिन अधूरा लगता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम मीठे पे एक लिमिट करें और कोशिश करें कि हम मीठा कम खाएं और इसकी जगह हेल्दी ऑप्शंस चुनें। हमें ऐसा लगता है कि मीठा खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे।
0: तो आप इस आदत को बदलने के लिए क्या करती हैं? मतलब आप मीठे के जगह और क्या दूसरे ऑप्शंस को चूज करती हैं?
1: हम मीठे की जगह दूसरे ऑप्शंस में ड्राई फ्रूट्स चूज करते हैं, डेट्स चूज करते हैं, रेजिन चूज करते हैं, फ्रूट्स चूज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी हो। लिटिल स्टेप्स ही एक बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे फिर उसके बाद।
0: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मीठे खाने की आदत जरूर बदल पाएंगी, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगी। तो आप ये बताइए कि आप हमारे जरिए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके जरिए कर हर मैदान फतेह गीत सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसका मैसेज और इरादा थोड़ा मजबूत सा है जो कि हमारी बातों को अच्छे से बता सके और एक मोटिवेशन दे।
0: बिल्कुल, हम आपके पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बीटेक बायोटेक की स्टूडेंट हूँ।
1: अच्छा, तो आप आगे जाके क्या करना चाहती हैं?
0: मेरा इंटरेस्ट यानी कि मेरी रुचि तो रिसर्च फील्ड में है। मैं रिसर्च जेनेटिक रिसर्च करना चाहती हूँ।
1: ओके, अच्छा ये बताइए, जो हमारा आज का विषय है वो है एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहती हैं। हर किसी की अच्छी बुरी दोनों आदतें होती हैं, कोई एक ऐसी आदत, कोई ऐसी इच्छा जरूर होती है किसी की कि हाँ मुझे ये अपनी आदत बदलनी है, तो आपकी ऐसी कौन सी आदत है?
0: जी तो मेरी एक ऐसी आदत है जो कि है डिस्ट्रेक्शन को अवॉइड करना और टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज करना, क्योंकि टाइम वेस्टेज एक ऐसी चीज है जिनसे मेरी बहुत सारी चीजें छूट जाती है। जैसे मेरी पढ़ाई है, जो मेरे टारगेट रहते हैं, जो मेरी दिनचर्या के पर्टिकुलर ऐसे एस्पेक्ट रहते हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, वो रह जाते हैं। और डिस्ट्रेक्शन का मेजर कारण सोशल मीडिया है। फोन एक मेजर डिस्ट्रेक्शन है मेरा। बाकी डिस्ट्रेक्शन है जैसे कि दिनचर्या में मेरा ज्यादा सोने का टाइम होना या टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना, ये सारे कुछ कारण है जिनकी वजह से मेरा जो शेड्यूल रहता है, जो प्लान टारगेट रहता है, वो अचीव नहीं हो पाता है। तो उसे अवॉइड करना, टाइम मैनेज करना और डिस्ट्रेक्शन को कम करना।
1: तो आप अपने इस आदत को कैसे बदलती हैं? मतलब आप टाइम मैनेज करने के लिए आप क्या करती हैं?
0: सबसे पहले तो मैंने ये चीज देखी, एनालाइज करी कि टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। तो टाइम वेस्टेज के जो क्राइटेरिया हैं जो मैंने एनालाइज करे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, फोन, लैपटॉप, इन सबको मिनिमाइज करना टाइम के साथ, इन सब पे टाइम देना कम करना। और जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब जाता है। तो उस स्लीप साइकिल को अपना सही करना और हॉबीज को परस्यू करना फ्री टाइम में, ना कि टाइम को वेस्ट करना। तो अभी फिलहाल इन सब पे काम चल रहा है।
1: हाँ, सोशल मीडिया तो है ही हमारा डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन। आजकल का
0: जी
1: यूथ जो है सोशल मीडिया पे ही सबसे ज्यादा, लेकिन अगर हम उसी सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करें तो वो भी एक अच्छा जरिया बन सकता है। बट यही है कि आप कैसे उसको यूज करते हैं।
0: जी ये तो एज अ यूथ अगर हम देखें तो आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया है उस हिसाब से। और जैसे कि हमारी जितनी भी पढ़ाई होती है, यानी अगर मैं अपना ही बताऊं तो बीटेक बायोटेक का जो कोर्स है उसमें जो भी मेरी पढ़ाई है, मेजर बैचेस चलते हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो सोशल मीडिया, फोन, लैपटॉप, ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है इस केस में। पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सोशल मीडिया के भी हैं
1: हाँ, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
0: जी, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
1: अच्छा श्रेया, आपसे बात करके तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो अपनी आदत है वो आप बदल पाएंगी और आप उसमें सक्सेसफुल होंगे और अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगी।
0: शुक्रिया।
1: हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं अरिजीत सिंह द्वारा गाया हुआ गीत सुनना चाहूंगी।
1: ठीक है, हम आपकी पसंद का आपका गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज का जो विषय था हमारी यू जंक्शन का दिव्या, बहुत ही अच्छा था। और अच्छा भी लगा कि हमारी ऐसी कौन सी आदत जो हम बदलना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे जो भी दोस्त हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, तुम अपनी कौन सी आदत बदलना चाहती हो?
1: वही एक इकलौती आदत, सबसे ज्यादा मेरी बुरी आदत है मेरा आलस।
0: अच्छा, तुम्हें भी आलस की प्रॉब्लम है। तो अच्छा, इसको
1: बहुत
0: चेंज करने के लिए तुम क्या करोगी?
1: मेरा तो सिर्फ यही है कि जो काम हमें जिस वक्त बोला जाता है उसी वक्त तुरंत कर दें, अपने माइंड पे ना हावी ना होने दें अपने आलस को। तो बस यही
0: नहीं, ये
1: एक
0: जो
1: चीज
0: बात
1: है,
0: आप बोल रही हैं दिव्या जी, अगर ये आप लागू कर ले जाएं तो अच्छी बात है।
1: कोशिश पूरी करते हैं, कई बार नहीं होता है लेकिन कई बार हो भी जाता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं अपने
0: लेकिन
1: आलस को।
0: दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस समय में कि जो की ना जा सके। अगर हम कोई किसी काम को करने के लिए ठान ले तो हम जरूर करते हैं। और अब हम आगे ठानते हैं आपको जानकारी देने का सिलसिला जो है और आगे बढ़ाया जाए। और चलते हैं इतिहास की ओर, और इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास था। तो दिव्या बताइए।
1: सबसे पहले 1290 में आज ही के दिन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसके साथ ही खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी और गुलाम वंश का शासन समाप्त हो गया था।
0: इसी के साथ दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र आज के दिन ही शुरू हुआ था।
1: और 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो तक की अपनी साहसिक यात्रा शुरू की थी।
0: तो चलिए, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि आपके लिए रोजगार की आज सूचना क्या है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट ALP पदों के लिए 11,127 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है। इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, और साथ साथ संबंधित ट्रेडों में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए।
1: और इच्छुक उम्मीदवार इसके अंतिम तारीख यानी 14 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। और इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.applied.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: और दिव्या, इससे पहले कि अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव तक तो पहुंचा जाए, जो हमारे श्रोता, हमने बहुत स्टार्टिंग में ही अपना क्वेश्चन बता दिया था, तो एक बार फिर से उनको क्वेश्चन बता दिया जाए।
1: तो हमारा आज का सवाल आपसे ये था कि किस शहर में

0: लोक निर्माण निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सड़क संकेतकों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है।
1: तो दोस्तों इसका जवाब आपको कहाँ देना है ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों हमारे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है, लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जो बेहद खास है, क्योंकि ये स्वच्छता हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, स्वच्छता हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ये न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व और समाज की पहचान भी बनती है। एक स्वच्छ वातावरण में रहने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
1: स्वच्छता की शुरुआत दोस्तों स्वयं से होती है। नियमित रूप से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना तथा अपने आसपास सफाई बनाए रखना अच्छी आदतों की निशानी है। इसी प्रकार हमें अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए।
0: तो और आज के समय में जो बढ़ता प्रदूषण है, गंदगी है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसके बजाय कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्वच्छता को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना था। उनका विश्वास था कि स्वच्छता से ही स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि अपने घरों, मोहल्ले और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तथा स्वच्छता के प्रति लोगों को भी जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल, और स्वच्छता केवल एक आदत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में एक हमारा छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अब हो चला है हमारे जाने का वक्त, तो दीजिए हमें इजाजत अपने दोनों साथियों को, यानी कि मुझे शिवानी
0: और दिव्या को।
1: आपसे फिर मुलाकात होगी युववाणी के किसी अंक में। तब तक आज के इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपया के लागत वाला 319 परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि डबल इंजन के सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रहल ह, उद्योगन के बढ़ावा दिहल जा रहल ह, जिससे नौजवानन के पलायन रुकल बा। श्री योगी कहले कि चारों ओर 6 लेन और 4 लेन से कनेक्टिविटी तेज भइल ह, जिससे विकास की गति मिल रहल बा।
2: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ रुपया के विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ए मौका पर जनसमूह के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनले के बाद स्थानीय उद्योगन आ हस्तशिल्प के बढ़ावा मिलल है, जैसे कारीगरन आ व्योपारियन के आय में बढ़ोतरी भइल है। सरकार बिना भेदभाव गरीबन, किसानन, नौजवानन और महिला लोगन के कल्याण बदे कार्य कर रहल है। वहां के कहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के बाद नया भारत के उदय भइल हवे।
2: 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था? भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था, नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी। आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है, हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि विज्ञान और नवाचार

0: प्राचार्य से राष्ट्र अमानवता के कल्याण संभव बा। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान भारती के 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन करत उहां के कहली कि जवन देश विज्ञान के लोक कल्याण से जुड़लस उहे विकास के शिखर पर पहुंचल बा। मुख्यमंत्री कहले कि भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा आ वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश के कब्बो विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनौले रहल। उहां के कृषि आ MSME क्षेत्र के भारत के सबसे बढ़न ताकत बतावत कहली कि किसानन आ कारीगरन के नवाचार क्षमता के बढ़ावा दिहल समय के जरूरी है। मुख्यमंत्री ऑर्गेनिक आ जीरो बजट खेती के प्रोत्साहित कैले आ रासायनिक उर्वरकन के ढेरी उपयोग से बचले के आह्वान कैले। उहां के बतौले कि एक जिला एक उत्पाद योजना से प्रदेश के निर्यात 2,00,000 करोड़ रुपया से बेसी हो गई बा। इससे पहले मुख्यमंत्री BHU में बने रहल 200 बेड के अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग के निरीक्षण कई के निर्माण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिले। सूचना और प्रसारण मंत्रालय टेलीविजन रेडियो आ संचार सेवा से जुड़ल दूरसंचार नियम 2026 के मसौदा सार्वजनिक परामर्श खातिर जारी कैले है। ई मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवा बदे जारी कई गो निर्देशन के नया दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरा में शामिल कैले के उद्देश्य से तैयार कैल गेल बा। नया प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आ निजी प्रसारकन के बीच होखे वाला ग्रांट ऑफ परमिशन अग्रीमेंट पर दस्तखती के जरूरत के खत्म कई दिहल गेल बा। ऐसे इस सज्जो प्रक्रिया डिजिटल हो जाये। प्रदेश के राजधानी लखनऊ के सतही पूर्व आ पश्चिमी इलाकन में कई जिलन में आज मौसम अचक के बदल गए, जिससे लोगों के भीषण गर्मी आ उमस से राहत मिलल है। एक रिपोर्ट।
1: सुल्तानपुर में सुबह तेज धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई और दिन में ही अंधेरा छा गया। अयोध्या में भी काले बादलों के बीच अच्छी बारिश दर्ज की गई। उन्नाव में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। जौनपुर में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। अंबेडकर नगर में तेज हवाओं के साथ हुई वर्षा से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। चंदौली में धूल भरी आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि सीतापुर में सुबह से तेज हवाओं और जोरदार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने 17 जून तक प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी जारी की है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: सरकार ऑनलाइन प्रसारित हो रहल फर्जी वीडियो के खंडन कैले है, जेमे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एगो निवेश प्लेटफॉर्म के प्रचार करत दिखावल गई बा। वीडियो में 22,000 रुपया के निवेश पर रोजाना 80,000 रुपया और हर महीना 24,00,000 रुपया ले के रिटर्न के दावा कैल गई बा। पत्र सूचना कार्यालय के तथ्य जांच इकाई बतौलस की ई वीडियो फर्जी बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज के शेष और कल यानी 14 जून 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला सुनिएगा रात 8:10 से। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे डॉक्टर रमा सेन। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा महेंद्र नाथ तिवारी से काव्य पाठ। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय होगा गर्मी में मधुमक्खियों की देखभाल। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं सुरभि सिंह का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और शाम 7:45 पर कार्यक्रम रसरंग में। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनिएगा शाम 6:30 से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा पंडित राजन मिश्रा का गायन। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी गांव से, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल हुआ शाम 5 से, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर स्वर्णिम घोष की वार्ता आओ जाने रक्त के बारे में। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग हुआ दिन 1:30 पर। पत्र के लिए धन्यवाद, सुनिएगा दिन 1:15 पर। आपके ईमेल पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनिएगा दिन 11:30 पर। विषय होगा सिर की चोट और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे शिखा श्रीवास्तव। बाल संघ सुनिएगा दिन 11 से। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ सुनिएगा 10:10 से। 9:50 पर लोक संगीत के कलाकार होंगी नीलम मौर्या। मधुरिमा का समय होगा 8:45 और गुड मॉर्निंग बनारस 7 से। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा 6:40 पर। बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मधु राणा 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। तो रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:35 पर। विचार बिंदु सुनिएगा 6:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना होगा 6:10 पर। सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह कार्यक्रम खेती की बातें में 6:05 पर। तो ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटी से अंतराल के बाद।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: ढलती शाम के साए में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। आइए सुने फिल्म संगीत, और ये है कार्यक्रम का पहला गाना। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर की रचना। फिल्म का नाम फूल और कांटे, ये आवाज कुमार सानू की।

फूल और कांटे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत पैरेलाल की तर्ज।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना। ये मोहम्मद रफी की आवाज थी। राजा और रंक फिल्म का गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांस देशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक संबंधान् स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्यलक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:30 प्रधानमंत्री फ्रांस देशस्य नीस नगरं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः आगमनात् पूर्वमेव नीस नगरे स्थितैः प्रवासी भारतीय समुदायस्य सदस्यैः नवोद्योग संस्थापकैः उद्योगपतिभिश्च महान् उत्साहः प्रदर्शितः। अत्राशास्यते यत् इयं यात्रा यूरोपेन सह भारतस्य सम्बन्धान् दृढीकरिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् प्रधानमन्त्री

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज़ ऑन EIR ऐप, DTR, DRM और वेब OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: पंचो राम का हो बुझावन भैया, का
0: हाँ सुमारो भैया,
1: हाल चाल है किसानी के ही बता जा पहले आज।
0: ये भैया किसानी का बढ़िया हाल चाल बा आ
1: अच्छा
0: अपनो बढ़िया हाल चाल बा।
1: तो अपनों रही चाहे बढ़िया हाल चाल, बिया पड़ल कि तैयारी में हुआ।
0: ये भैया कुछ तो बिया पड़ गए है लेकिन कुछ वहीं बाकी बा। हाँ माने ये कहे के मतलब ये बा कि खेतवा दूर दूर बा है
1: हाँ,
0: तो एक जगह दूसरी जगह डाले के होबे न करी।
1: तो
0: हाँ
1: सही कला है, लेकिन अब
0: अले
1: समय हो
0: एक
1: गया
0: एक चीज
1: जल्दी
0: बात करें भैया,
1: का हो।
0: देखा सुमारो भैया सुमारे का भेंट भरी रहे आज शनिचर बा है, कहाँ रला है आजकल।
1: हाँ
0: हम समझत रही कहीं कोनो व्यस्त बाड़ा।
1: सही कला हो बुझावन। अब जानते हुआ कि गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल है,
0: हाँ बिल्कुल
1: बसन
0: है।
1: जुटाई की, बासन जुटाई की, राशन जुटाई की, रसनों घटल बाय
0: हाय हाय हाय।
1: है। तो यही से थोड़ा सा कुछ देर हो गल भेंट मुलाकात में, लेकिन तहार समाचार हमेशा लेत रही हम।
0: नहीं भाई बिल अब समाचार हमार तू लेत रहबा और तुहार समाचार हम लेत रहब तो ऐसे प्रेम भाव भी बनल रही।
1: जरूरी जरूरी
0: और
1: भैया।
0: देखा हम याद कैले रही कि सोमवार का भेंट भेज लिया शनिचर हो।
1: नहीं, वही तो सही कला। तार तो कुछ याददाश्त बहुत बढ़िया भी है, एक बदे बहुत बढ़िया। लेकिन एक बताओ, ढैंचा सनई की व्यवस्था भले कि नहीं,
0: ये भैया सनई ढैंचा तो हम तो करौले रही
1: बोले
0: आ,
1: जागरूक किसान हुआ
0: हाँ
1: और हमेशा जैविक खेती के बात होला।

0: और
1: देखा हमारे के पंचायती में भैया जौन हो कृषि वैज्ञानिक लोग भैया लोग आवल ना तो कहो ना भैया रासायनिक खाद के तनी कम प्रयोग करा लगो न, और सनई ढैचा वाली जौन खाद बाय ना ओकर ज्यादा प्रयोग करा। तो भैया तू तो सनई ढैचा के हम तो खेती करौले रही है।
0: नहीं तो बहुत बढ़िया कहला है। ऐसे देखा देखी लोग भी अगल बगल के किसान भी शुरू कर दिए हैं, ऐसे ही फायदा हो जाए कि यहाँ पर माटी बढ़िया हो जाए हो। कहीं से देखा तो रसायन का प्रयोग कर कर जो हम मित्र कीट हुआ, धीरे केचुआ भी मर जात हुआ, मित्र कीट भी मर जात हुआ, रसायन के देना और जैविक खेती से हरी खाद के खेती से माटी फिर बढ़िया हो जाए, उपजाऊ हो जाए
1: अच्छा भैया जब जैविक खेती के बात कैला है अपना तो
0: भैया।
1: जैविक खेती से खेती कैले पर फसल जौन भी बाय मन के धान गेहूँ बाय चाहे सब्जी बाय एक तो ओकर उत्पादन भी बढ़िया होला और दूसरी बात जब सब्जी पैदा हो जाए तो भैया हमनु वह खाएल जाला
0: ओका गुणवत्ता,
1: आकर गुणवत्ता बड़ा बढ़िया बढ़
0: हाँ
1: जाले और साथे साथे मिट्टी भी बड़ा सुरक्षित रहले। अब मिट्टी से उसे लंबे समय तक हमन के खेती करे के बाद आ एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी के छोड़ के जाए के बाद तो ऐसा न के खेती के हमन मिट्टी के हमन जहर बनाए के जाए जा।
0: नहीं नहीं भाई, तो बड़ी बड़ा सोच होनी चाहिए कि माटी के मजबूत कर लिया तो किसानी मजबूत है। जब तो किसानी मजबूत रही देखा हमारे गृहस्थी भी नाना प्रकार का। अब जैसे मलवास चला था तो दान के बात वाला दान
1: बिल्कुल
0: है
1: भैया
0: कि भाई कोई दान पुण्य कर दो जाए समाज में, ऐसे भी लोग हुआ जो क्या आवश्यकता
1: हाँ
0: है तो दान के भी अपना बहुत बड़े महत्व
1: अच्छा ये सुबारो भैया
0: भैया।
1: जब दान के बात कैला ना तो बहुत प्रकार का दान होला आ लेकिन कौनो दान कैदा अब दान कर ब्या तो ओकरे दान कैले के बाद बड़ा संतुष्टि मिलल है महसूस कैले बाटा कि नहीं।
0: एकदम महसूस के लिए ही तार इशारा भी समझे थे। ऐसे में देखा इशारा के पहले बोल देती हम कि दानी हजारों जमाने से गुजरना,
1: अच्छा
0: दानी हजारों जमाने से गुजरना,
1: हाँ
0: मगर नेत्रदान का वहां तो अपने जगह बा।
1: अरे भैया कितना यही से तो कहल जाला कि भैया नेत्रदान महादान
0: महादान
1: माने एके श्रेष्ठ दान भी कहल जाला ऐसे बढ़ के कौनो दान
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: बा। एक चीज
0: और
1: और सुमारू भैया
0: भैया बोला
1: माने जीते जीते रक्तदान और मरले के बाद नेत्रदान।
0: बहुत बढ़िया बोला
1: हाँ
0: हो बुझाओ भैया
1: हाँ
0: कि भाई रक्तदान से जिंदगानी मिल जाला और जो
1: बिल्कुल
0: महादान जो नेत्रदान बोला महादान है। लेकिन आज भी हमन के समाज में फैल गल है, मन में धारणा बन गल है
1: हाँ
0: कि जब नेत्रदान हुई तो आंख डॉक्टर साहब चाकू से निकाल लिए तो चेहरा भक्सावन हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं है, भक्सावन कभी नहीं हो, है कि नहीं।
1: नहीं भैया भक्सावन नहीं हुआ दूसरी चीज भाई की जौन ओकर पारदर्शी भाग बाय आँखी का कार्निया खाली वह निकालल जाला ये खाली भ्रांति बा एक न सोचे के चाहिए।
0: भाई देखा मरले के बाद इस शरीर माटी में मिल जाए,
1: बिल्कुल
0: अगर हमारे नेत्र से दूसरे के जीवन उजियाला हो जाए है ओकर दुनिया रंगीन हो जाए
1: आ हा
0: तो
1: हा
0: कितना बढ़िया बात बुझाऊन भैया।
1: अच्छा ये कि सुमारू भैया जानत हुआ
0: का हो
1: पहले हमन बचपन से सुनत आओ थे जाना कि
0: हाँ
1: पहला सो खी
0: हाँ
1: निरोगी काया
0: हाँ हाँ हाँ
1: और हमन देखल जाला कि आँखें से दुनिया खूबसूरत देखल जाले
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आ
0: भाई।
1: जेकरे पास आँख ना बा वो खूबसूरत दुनिया कैसे देख पाई भैया।
0: नहीं एकदम सही कहा, तेकरे बदे संकल्प ले हुई हम उनके
1: बिल्कुल संकल्प
0: हाँ।
1: ले को हुई
0: और संकल्प लेकर के भाई मरले के 6-7 घंटा तक डॉक्टर भैया लोग बताओ ना
1: बिल्कुल भैया बताओ ना भैया
0: कि आँख सुरक्षित रहेला।
1: हाँ 4 से 5 घंटा तक डॉक्टर
0: हाँ
1: भैया लोग बताओ ना कि सुरक्षित रहेला और जो उन्हें नेत्र बैंक के आँख का
0: संकल्प
1: पंजीकरण कराए देवल गल बा या
0: हाँ
1: माने संकल्प ले लेवल गल बा
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो के सूचना देने के बाद 4 से 5 घंटा तक के बाद वो आँख
0: सही
1: देव
0: रही
1: देवल जा सकेले भैया।
0: हाँ करेक्ट चाहिए। और बढ़ चढ़ के हो चूंकि शरीर का उपयोग हो जाए, दूसरे के दुनिया अगर उजाला हो जाए बात बहुत बढ़िया है। देखा हमन महसूस करी ले जाए, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: महसूस ही हो रहा कि कौन जरे बाऊ बोलत हो तो उनके बात महसूस होकर, माई बोलत हो उनके बात महसूस होकर,
1: बिल्कुल
0: वैसे ही नेत्रदान से है महसूस होए लगी।
1: महसूस होए लगी सुमारू भैया एक चीज और यही से कहल जाला हम उनके बड़ बुजुर्ग कहले बाण
0: कहो
1: कि मरल शरीर अमर होले आत्मा और नेत्रदान से मिलल सीधे परमात्मा।
0: बाबा क्या बात बोला बुझाओ भैया, मन गदगद हो गल हो। हम करी कि
1: अरे तो आज
0: देखा
1: जवन तोहू बेलत हुआ सुमारू भैया ना तो हमरो मन गदगद होता हमारे पंचायती का जवन हो किसान भैया आज बहुत गदगद होते हुआ।
0: बहुत बढ़िया भैया तई भोगल नेत्रदान करे के चाहिए, तनको डरे ना सोचे ना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, महादान है। इधर बात अपन हो गया।
1: अच्छा।

0: एक चीज
1: भैया
0: जाऊर
1: भैया बोला।
0: भैया, जौन आप शुरुआतवा में नहीं कहला हाँ कि दान भैया बहुत प्रकार के होना, लेकिन इससे बड़ के दान नहीं होला। यही बदे जा कहल जाला कि भैया दानवीर वो होला जे दूसरे के दर्द के महसूस करे
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: वो
1: बहुत
0: दर्द
1: बढ़िया।
0: में जिए और वो दर्द के दूर करे का कोशिश भी करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कोशिश करे के मतलब जेकरे पास आँख से दिव्यांग बा और ओके
1: उसके तरह के महसूस करे कि
0: महसूस
1: भाई
0: करे, अगर ओके आँख अगर मिल जाते तो भैया वो दुनिया देख सकेला।
1: हाँ, दुनिया रंगीन हो जाए उनका।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हो नेत्रदान के बाद अब किसान भाई लोग जो होते हैं कुछ संदेश हो तो आगे बातचीत हो।
0: बिल्कुल होते रहिए भैया।
2: अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा।
3: लो तुम ही कर लो।
2: देखो तुम
4: इधर आओ। क्या बात?
3: फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है।
4: देखो अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़, अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है।
3: पापा इट इज सो इजी।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए,
6: सतर्क रहिए।
1: भैया
0: हाँ
1: संदेश
0: भैया
1: तो होगल।
0: बिल्कुल भैया
1: आप देखा कहल गल कि खेती बाड़ी हो कमन करबे करी जाए,
0: बिल्कुल
1: और
0: भैया कह
1: खेती
0: जाए।
1: बाड़ी में तरह तरह खर्चा भी है, तो है कि नहीं? कभी दवाई है, कभी हिताई है, शादी ब्याह है,
0: हाँ
1: बच्चन के पढ़ाई है, तरह तरह खर्चा है। तो अत्यधिक आमदनी बदे हमन का कर ले जा कि छोटा मोटा कुटीर उद्योग कर ले जा, मन
0: बिल्कुल
1: मधुमक्खी पालन भी कर ले जा मन,
0: बिल्कुल
1: है
0: माने
1: कि नहीं?
0: शहद के बात कहल चाहत हुआ।
1: हाँ
0: हाँ
1: गर्मी के दिन में मधुमक्खी के देखभाल हमन कैसे करल जाए? डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव भैया से दिनेश कुमार सिंह भैया बात करते हैं, सब पंच भाई सुने।
0: तो बिल्कुल सुनवा दें भैया।
7: डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप प्रधान वैज्ञानिक हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में। आज हम आपसे मधुमक्खी के देखभाल के संबंध में जानल चाहे, जे किसान भाई मधुमक्खी पालन करते हैं तो गर्मी के सीजन में कौन तरह से देख रेख करें?
8: गर्मियों के सीजन में मुख्यतः तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। एक तो जहां पे मधु पेटिका रखी गई छायादार स्थान हो, तो उसके लिए बगीचे में रखना इस टाइम सर्वथा उपयुक्त रहता है
7: जी।
8: दूसरा 3 किलोमीटर की परिधि में उनके लिए पर्याप्त भोजन रहना चाहिए। मधुमक्खियों का भोजन से तात्पर्य कि फूल बढ़िया होना चाहिए, या तो इस टाइम गर्मियों के दिन में सूरजमुखी खेती हो, कुकुर बिट साहब का नेनुआ है, करेला है, कोहड़ा है, लौकी है, इसमें अच्छा निकलता है मकरंद, इनका खेती हो, सूरजमुखी की खेती हो।
7: नहीं तो कितना एरिया में रहे सब्जी खेती?
8: अरे अगर एक मधुमक्खी पालक 100-200 पेटियां रखा है तो कम से कम 3-4 एकड़ में, 5 एकड़ में मिनिमम बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट। और जितना अधिक से अधिक संख्या में रहेगा उतना फायदा होगा, क्योंकि 1 एकड़ के लिए 8 पेटी रिकमेंडेड है। मतलब 1 एकड़ अगर बढ़िया कोई फसल फूलवाली लगी है, जैसे नेनुआ आया, तोरई, कोई भी, तो 8 पेटी।
7: गेंदा वगैरह का फूल रहे कुछ काम करे?
8: गेंदा पे जो एक देसी गेंदा छोटा वाला लाल है गेंदा, उस पे कुछ भ्रमण करती हैं।
7: अच्छा।
8: बन तुलसी है उस पे भ्रमण करती हैं, लेकिन जो नारंगी वाला बड़ा वाला गेंदा है उस पे भ्रमण नहीं करती हैं।
7: अच्छा नीम जामुन तो ठीक है आजकल?
8: जामुन बहुत बढ़िया, अब तो जामुन फल गया है। अभी पिछले महीने जामुन में आम पे अच्छा शहद निकला।
7: अच्छा
8: हाँ लीची में बढ़िया शहद निकला।
7: अच्छा मान लेना बैठे तो फिर क्या उपाय?
8: ये सर इसीलिए कहा गया है कि मधुमक्खी पालन के लिए डर्थ पीरियड होता है जो जून का महीना, खास करके हमारे पूर्वांचल में और बिहार में, क्योंकि इस टाइम मोस्टली जो फल वाले पौधे हैं सबका वो पूरा हो जाता है, कहीं फल नहीं आता। तो या तो किसान जागरूक है, उस एरिया में बढ़िया कुकुर बिट्स की खेती हो, मक्की बढ़िया खेती हो, तब तो किसान भाई पेटिया रखे, और उनको फायदा लेना है सबसे बढ़िया। हम तो उनको ये सलाह देते हैं कि मई के बाद पेटियां लेके वो झारखंड में चले जाएं। जो झारखंड की पहाड़ियां हैं वहां पे बहुत अच्छा इस टाइम छोटे छोटे जंगली झाड़ियां हैं जिससे बहुत बढ़िया शहद निकलता है।
7: अच्छा
8: हाँ
7: अच्छा जैसे आम फल गिरा रहा था कहीं पका तो ऊपर ही मधुमक्खी आके बैठ जाते हैं?
8: आती है, स्वभाव उनका है कि जहां खुशबू से
7: हाँ।
8: मीठापन से थोड़ा बहुत लेती हैं, लेकिन उसमें क्या है डर भी रहता है इन्फेक्शन का।
7: अच्छा
8: कभी कभी कोई इनके जितने बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं कि दूसरे मक्खियों से और किसी तरह से, तो उस तरह से जहां इनकी पेटियां रखी जाए साफ सफाई रहे कि गंदगी न रहे, इस टाइप का खतरा न रहे, पीने का पानी स्वच्छ रहना चाहिए। जहां भी आप मधु पेटिका रखे हैं डेली स्वच्छ बर्तन में, उनके पीने के लिए सुबह शाम पूरे दिन पानी रहना चाहिए।
7: जी और जहाँ ज्यादा फूल बाटे छे जंगल उंगल बाटे गर्मी के सीजन में तो वह लेके जाए रखे।
8: हाँ एक

0: बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं पिछले भी कार्यक्रम में आया हूँ, इसको किसानों को बढ़िया समझाया हूँ
1: जी।
0: ये पूरा महीने पूरे साल का सरचार्ट होता है कि कब किस महीने में कहाँ फूल है।
1: अच्छा,
0: जब आपको फूल जहाँ पे है पेटिया पे आपको ले जानी है, इसी कहते हैं माइग्रेटरी बी कीपिंग। तो हम छोटे किसानों को सलाह देते हैं कि चलिए आपके पास 25 पेटी 30 पेटी, तो आप समूह में 5-6 किसान मिलके और एक अपना प्रोग्राम बनाइए कि हमको इस महीने से इस महीने तक बिहार में रखना है, इसके बाद झारखंड में रखना है।
1: अच्छा,
0: मुख्यतः जो हमारा ये पूर्वांचल है यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं सितंबर से लेकर सरसों के सीजन तक।
1: जी जी,
0: क्योंकि जैसे ही आपका सरसों के सीजन समाप्त होता है उसके तुरंत बाद बिहार में लीची आ जाती है।
1: और अच्छा, अगर पेटी लेके जात बाटे
0: जी
1: घरे से तो कौन सी बात ध्यान में रखें पड़ेगा?
0: ध्यान में रखना यह है कि अगर सुबह इनको पेटी लेके जाना है तो शाम के टाइम हर पेटी का मुंह इनको बंद करना पड़ेगा। पेटी का
1: मतलब मधुमक्खी सब अंदर रहे?
0: हाँ, अंदर रहे, पेटी बंद करके उसको ट्रक में रख लीजिए, छोटी गाड़ी में जितनी आपके पास पेटियां हो वैसी व्यवस्था रख लीजिए। और प्रयास करिए कि आपकी यात्रा रात भर से ज्यादा नहीं हो, अगले दिन सुबह तक फिर वो अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाए।
1: और लगे एक बार फिर जो
0: हाँ
1: छेदा को
0: हाँ, जहाँ पे सही स्थान पे रख के उसके बाद उनका मुंह खोल दीजिए,
1: तो उसके बाद निकल के अपना रास्ता बना ले।
0: हाँ, इनका ये है कि अगर जैसे आप डेली का इनको माइग्रेट करते हो, आज पेटी यहाँ रखे कल 10 फीट सरका दिए, वो प्रॉब्लम करता है। जहाँ पे एक बार पेटियां आपने रख दिया तो कम से कम 3-4 महीने उस स्थान पर रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए
1: जी। और अगर मान ली दिक्कत बाटे तब क्या करें?
0: तब उसको डर्थ पीरियड कहते हैं, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। 10% चीनी का घोल,
1: अच्छा,
0: और उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक मिला करके मधुपेटिका में रखा जाता है। तो शहद तो उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको भोजन चाहिए,
1: जिंदा रहे,
0: हाँ, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। कि जैसे आपका बरसात का सीजन स्टार्ट होता है, जैसे फूल उनको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, फिर शहद बनाएंगे वो। लेकिन ये घाटे का सौदा है। अगर कोई किसान 50 पेटी 100 पेटी रखा है और 1-1.5 महीने ऐसे चीनी खिलाकर रखता है तो कास्ट भी अधिक आती है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। और जबकि ये महीना पहाड़ों पे पर्याप्त मात्रा में फूल रहता है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: तो ये बात उनका ध्यान में रखे के बाटे
0: जी,
1: तब उनका उत्पादन ज्यादा मिले।
0: हाँ,
1: और फायदा हुए।
0: हाँ,
1: और एक अलावा जैसे आप कहते हैं कि पानी वगैरह रखे के तो वो जरूरी बाटे।
0: पानी बहुत जरूरी है, खास करके गर्मियों में हर जीव की आवश्यकता पानी बढ़ जाती है। तो जहां भी उनकी पेटियां हैं साफ, उनके कटोरी में या बड़े टब में ऐसे छिछलेदार बर्तन में पानी रहे कि वो सुगमता से बैठ सके किनारे, उस पर पी ले। अगर टब आपका पानी का बड़ा है तो उसमें क्या करते हैं कि भिगो के टाट का जूट का बोरा रख देते हैं।
1: अच्छा,
0: कि वो बोरा उसके अंदर थोड़ा सा अंदर बाहर रहता है तो उस पर सुगमता पूर्वक बैठ के पानी पी सके।
1: अच्छा, एक अलावा जैसे कुछ दुश्मन भी हुए इनके, चिड़िया उड़िया कौआ?
0: लेकिन ये जून के महीने में गर्मियों में दुश्मन कम रहते हैं।
1: हाँ,
0: सर्दियों में इनको चिड़िया बहुत तेज खाती हैं।
1: हाँ,
0: तो उस टाइम थोड़ा सा नेटिंग वगैरह की व्यवस्था करते हैं या साउंड का कुछ शोर थोड़ा करते हैं कि चिड़िया नहीं आए।
1: हाँ,
0: इस टाइम पे इनका टेम्परेचर ही मेन प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ तक डिजीज की बात है, वायरस और बैक्टीरिया दो डिजीज इनको काज करते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतें।
1: छिपकली वगैरह न रहे?
0: नहीं, छिपकली से नहीं, इनको इनकी जो पेटियां होती हैं, पेटियों में जो पाए होते हैं उनको हमेशा पाए को छोटी छोटी शील कटोरियों में पानी रख के उसमें डुबा कर रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: नहीं तो उस पाए से चींटियां चढ़ जाती हैं ऊपर, और चींटी एक बार पेटिका में चढ़ गई तो वो फिर शहद भी खाएगी, आपके अंडे को भी खाएगी, बच्चे को भी खाएगी, तो
1: अंदर घुस जाती
0: है जी।
1: अच्छा, कोनो बीमारी भी हो सकता है इस समय?
0: बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है और माइट का है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखे किसान भाई, सल्फर का छिड़काव समय समय पर पेटियों करते रहे, एंटीबायोटिक, इसीलिए मैंने बोला कि बीच बीच में महीने में एक बार या दो बार, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जरूरतमंदेड मात्रा है, पेटियों में एंटीबायोटिक का दें तो पेटियां सुरक्षित रहेंगी।
1: और सल्फर छिड़काव कैसे करेगा?
0: सल्फर का छिड़काव ऐसे करते हैं जिस टाइप आप पेटियां बदलते हैं, मैं वैसे ही कहता हूँ कि जो किसान भाई इसमें लगे हुए हैं इनमें पेटियों को 2 सेट रखा जाता है। जब आप शहद निष्कासन कर रहे हैं, शहद निष्कासन की, तो उस टाइम पेटी बदल दीजिए, नई पेटी साफ सुथरी, उसको सल्फर डस्टिंग वाली खाली फ्रेम को उसमें लगाइए। जो पेटी आपको शहद के साथ निकाल लिया आपने, फिर उसको साफ सफाई करके रिजर्व में रखिए।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से जितनी बार आप हार्वेस्टिंग करते हैं, शहद निष्कासन करते हैं, उतनी बार पेटियां आपकी ऑटोमेटिक बदल जाती हैं।
1: अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जो इनका जो डिब्बा रहा थे
0: जी,
1: बक्सा उनका,
0: हाँ,
1: बक्सा बढ़ावे प्रक्रिया का रहा था, का यही सीजन में रहा था कि
0: नहीं? बक्सा इनका सबसे बढ़िया कब बढ़ेगा? जब खूब फूल हो, जितना भोजन रहेगा उतना। बक्सा बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका।

0: रहता है हमारे यहाँ सरसों सीजन से लेकर के लीची तक,
1: अच्छा
0: जो हमारा कंडीशन है यूपी बिहार का, खासकर
1: हाँ
0: पूर्वांचल का बिहार का, सरसों सीजन से लेकर के और लीची सीजन तक हम बक्सा बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब रानी दो ठिकाने
0: हाँ, उसमें हम दो रानी आराम से कर सकते हैं।
1: करें।
0: दो क्या आवश्यकता आपके पास है, फैसिलिटी है तो आप तीन कर सकते हैं। सेल डिवीजन उसी टाइम होता है, डिवीजन उसी टाइम करते हैं, जब पर्याप्त
1: अच्छा।
0: भोजन रहता है। जी,
1: तो ये सब बात उनका सीखे पड़े पहले।
0: हम सिखाते रहते हैं इस कार्यक्रम में। मैं चौथी या पांचवी बार बोल रहा हूँ, अभी मैंने अपने यहाँ जो नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से 35 किसानों को मैंने इस पर प्रशिक्षित किया, उनको भारत सरकार की योजना में प्रत्येक किसान को 5-5 पेटियां मैंने दिया अनुदान के
1: अच्छा
0: स्वरूप, और अच्छे किसान है वो सब कर रहे हैं। करीब पिछले एक परियोजना में 3 साल चला रहा हूँ, और बहुत से किसान अगल बगल के मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, ये सब मेरी परियोजना से जुड़े हैं और लाभ उठा रहे हैं। और वैसे भी जो किसान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भ्रमण करता है, उसको मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सब्जियों के बीज उत्पादन, मतलब जो भी समस्याएं हैं सब्जी से लेकर मधुमक्खी मशरूम, सबका निवारण हम लोग करते हैं।
1: जी। तो मधुमक्खी पालन जो उनका अगर शुरू करे चाहते हैं व्यवसाय,
0: जी
1: तो वही जाड़े सीजन में शुरू
0: हाँ,
1: करें।
0: सबसे बढ़िया हम हिरा देते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि उस टाइम पर्याप्त मात्रा में प्रचुर भोजन रहता है, और इससे भारत सरकार जो आपका ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से अनुदान भी है किसान भाइयों के लिए।
1: अच्छा।
0: हमारे पास आए, हम प्रशिक्षण प्राप्त करें, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, उसके बाद सर्टिफिकेट के बेस पे इनको हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान भी मिलेगा।
1: जी, तो गर्मी मधुमक्खियों की देखभाल कौन तरह से की जाए, जौने से कि उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, इसके बारे में आज आप जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ बुझाओ भैया,
1: हाँ सुमरु भैया,
2: जानकारी तो बहुत बढ़िया मिलल।
1: बिल्कुल
2: डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव भैया से दिनेश कुमार सिंह भैया फरियाद के बतियात रहना है कि गर्मी में मधुमक्खियों की देखभाल कैसे हमन करल जाए। अब कहते ही कि सुरभि सिंह का देखा गौरव भैया साथ में पंच लोग सुनने
1: बिल्कुल सुनवा दो भैया।

0: आ विदेशिया से सुन लेला सुरभि सिंह का भैया, अकल बताता बिहने दिनेश भैया का जानकारी दी हो।
1: ये भैया देख, ये भैया कल सवेरे खेती के बातें में 6:05 पर जानकारी रही, समसामयिक कृषि कार्य का जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: अच्छा ये तो हो गल
1: हाँ,
0: है, हम तो कहते ठीक कौन और हो जाए हो।
1: हम बुझत रहली है, बुझत रहली कि कुछ बाय और सुने के मन। तो ये भैया सुने के मन बाय, तो भैया मन्ना लाल यादव साथी का एक गीत सुन लो।

0: बेटा दुपहरिया में कुदरिया चलावत बाय, ये किसान के तो कितनी बढ़िया मन्ना लाल यादव के साथी थी देखा समसमाई गाना और रहल।
1: अच्छा एक चीज और सुमारू भैया,
0: भैया
1: अपने पंचायती में ना
0: हाँ
1: जब हम सुनल जला गीत गौना ही है और जब हमारे किसान भाई भी सुनो ना तो मन तो बड़ा गदगद हो जाला।
0: एकदम सही कला बुझाऊन भैया। हाँ देखा तुम जब बात करा ला ना तो बड़ी सार गर्भित बात करा ला। अब
1: अच्छा तो यह है कि तुहु बड़ा मिठास वाली बात बोला ला।
0: अब घड़ी सारा कर तो चले के बेला होता
1: बिल्कुल भैया
0: तो पंच लोग सागे मगल जाए।
1: बिल्कुल
0: तो पंचो
1: राम राम समय से दे दे लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का ये गाना। गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार नौशाद।

शाम के 7:05 और 30 सेकेंड्स। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे नौशाद के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। गंवार फिल्म का ये गाना था। रात और दिन इस फिल्म का गीत आइए सुने। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। आवाज मोहम्मद रफी की।

ऊपर से बोली अंदर से कातिल।

0: धर्मात्मा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना अनुसार रविशंकर पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी कहुआ नाला थाना अनपरा जिला सोनभद्र कहीं गुम हो गए हैं। रविशंकर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। लापता के समय रविशंकर ने चेकदार शर्ट और पैंट पहन रखा था। वह चिंता देवी पत्नी महेंद्र कुमार निवासनी सलैया डीह थाना कोन जनपद सोनभद्र कहीं खो गई हैं। चिंता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता के समय चिंता देवी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इन दोनों खोए हुए व्यक्तियों के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। एक बार पता पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली है, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान

भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान

0: संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जीरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
2: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
1: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
3: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत

0: मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सरबेला कार्यक्रम में आइए सुने महेंद्रनाथ तिवारी से काव्य पाठ।
1: पर्यावरण पर एक गीत आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। अब दरख्तों में साए नहीं हैं, ये खुदा के सताए नहीं हैं। जुर्म कोई रहा अब न बाकी, हमने जो इन पे ढाए नहीं हैं। इन दरख्तों पे ही तो परिंदे पले, इनकी शाखों में ही गुल और गुंचे खिले। इन दरख्तों की बादल से है दोस्ती, आबे जा भी तो हमको इन्हीं से मिले। आबे जा माने जीवन जल, इन दरख्तों से ही हमको मिलती दवा। इन दरख्तों से ही हमको मिलती दवा, इन दरख्तों से ही हमको मिलती दुआ। शक्ल सूरत जमी की इन्हीं से सजे, और इन्हीं की बदौलत है आबो हवा। ये जा से सारा जलवायु इन्हीं की बदौलत है। ये ही सीता को बन के निगह बा मिले, रक्षक। ये ही सीता को बन के निगह बा मिले, इसके साए में गौतम को मंजिल मिले। ये जहां में है रहते फकीरों से है, देखे सब कुछ हमें ये अकेले चले। देखे सब कुछ हमें ये अकेले चले। और देखिएगा, बिन दरख्तों के धरती बिखर जाएगी, बिन दरख्तों के धरती बिखर जाएगी। ये बियाबां और सहरा नजर आएगी, आग सैलाब और जल जले आएंगे। आग सैलाब और जल जले आएंगे, सर छुपाने को दुनिया किधर जाएगी, सर छुपाने को दुनिया किधर जाएगी। और एक महत्वपूर्ण संदेश, पेड़ जब भी कटा तो कटी जिंदगी, पेड़ जब भी कटा तो कटी जिंदगी, पेड़ जब भी लूटा तो लूटी जिंदगी। सांस दर सांस लेना भी मुमकिन नहीं, पेड़ जब भी मिटा तो मिटी जिंदगी, पेड़ जब भी मिटा तो मिटी जिंदगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि गरचे चाहो कि दुनिया ये आबाद हो, गरचे चाहो कि दुनिया ये आबाद हो, आदमी आदमियत न बर्बाद हो। इन दरख्तों को ऐसे संभालो सभी, वक्त गर्दिश की मानो ये इमदाद हो। ये उपहार है, वक्त गर्दिश की मानो ये इमदाद है। और इसी तरह से पेड़ों को आप संभालिए, पर्यावरण को संभालिए। इसी संदेश के साथ यह गीत समाप्त कर रहा हूँ। साथियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के अग्रणी कीर्तिलब्ध नेता माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अनुप्रेरित होकर एक गीत मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। केसरिया रंग

धानी पगड़ी बांधे, सर पर धानी पगड़ी बांधे, धरती पुत्र किसान चला उसके पीछे पीछे, देखो सारा हिंदुस्तान चला। और गीत का अंतिम बंद समर्पित है।

0: साथियों, काशी का संदेश पूरे देश के लिए, ये धार है गंगा की, ये धार है गंगा की तन मन निखार देगी, ये धार है गंगा की तन मन निखार देगी, यह लोक और परलोक दोनों संवार देगी। इसकी न धार बांधो न मैला करो इसे, इसकी न धार बांधो न मैला करो इसे, वरना ये हम सभी का पानी उतार देगी, वरना ये हम सभी का पानी उतार देगी, ये धार है गंगा की तन मन निखार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जाते जाते एक संदेश, एक मुक्तक देखिए कि केसरिया रंग में रंगा जब वीर जवान चलेगा, केसरिया रंग में रंगा जब वीर जवान चलेगा, गंगा जल सा धवल वस्त्र पहने जब ज्ञान चलेगा, धानी पगड़ी बांध किसान, जब खेतों में धानी पगड़ी बांध किसान चलेगा, अरे तभी प्रगति रथ पर सवार यह हिंदुस्तान चलेगा, तभी प्रगति रथ पर सवार यह हिंदुस्तान चलेगा। जय हिंद, जय भारत।
1: स्वरबेला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महेंद्रनाथ तिवारी से काव्य पाठ, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गंगा तेरा पानी, अमृत फिल्म का ये गाना। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि।

लता मंगेशकर की आवाज़ में बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे आक्रमण फिल्म का गाना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं डॉक्टर रमा सेन।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं डॉक्टर रमा सेन। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं एक और गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमासेन की आवाज में ये गजल। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी, और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी, एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है, और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना, और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम। कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है, और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था,

0: रिकॉर्ड हुआ 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए है तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए है तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए, और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसेल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब

0: लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो। लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है, वो आपको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए। मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए, वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है, वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं, तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है। मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे, उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहां देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूं कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहां उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने

ने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझ

0: अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है।
1: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
0: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
1: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए। और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
0: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
1: नहीं नहीं वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कर दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
0: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
1: कोई एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्रे से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे, बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक

0: का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है, ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए और मोबीक्विक जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी

0: हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी, और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में

0: दुनिया के आई थिंक नंबर वन या नंबर टू डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा।
1: सकते बिल्कुल।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
0: देखिए,
1: देखते हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8

0: बजकर 45 मिनट होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था

0: मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच

0: Sunset, a target of 195 runs for Rinder in Rain Mart first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामिये को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ्फुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के बाद से इस बरेआजम का ये उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है, जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्को तबादला ख्याल में दिफा, मसनू जानत, खला, तिजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुत नुमाए तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तहकम करने में भी मदद कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत और स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रिस्लवा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवास के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जान बहक हो गए।

0: Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu Khemaram Kumawat aur Agniveer Vayu Danish Alam ne farz nibhate hue apni jaane qurban kar di. Bharti Fazaiya ne kaha ki hadse ki wajah janne ke liye ek court of inquiry tashkeel di ja rahi hai. Bharti Fazaiya ne janon ke itlaaf par dukh ka izhar kiya hai. Wazir Difa Rajnath Singh ne bhi 5 Agniveeron ki halakat par dukh ka izhar kiya. सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और विकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा. जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है. उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है. मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़िदा 5 रोजा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ अख्तिताम पजीर हो गई. कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफ़िक़ तौर पर मंजूर किया गया. इस ऐलामिया में खुराक की यकीनी फरहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफिक काश्तकारी, ज़रई तिजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया. ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है. उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है. कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया. पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा. दूसरे इकदाम के तहत मसनूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तावन करेगा. तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा. चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक के खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा.
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी.
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तिरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है. उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मसनूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है. मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है. वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांवों से होकर गुजरता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तिरात और तहकीक विकसित भारत की असास हैं. जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही. सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजह करने पर जोर दे रही है. जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया. जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं. भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پاک

ढलती रात की सहे में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। आइए सजाते हैं अंजुमन की महफिल। ये आवाज जब भी गूंजती है तो हर शब्द रूह को छू जाती है। हर मिसरा जैसे दिल से निकला एक एहसास है।

शबीना अदीब की खूबसूरत सी गजल मेहंदी हसन की आवाज में आप सुन रहे थे। हर सुर में छुपा है दर्द और सुकून का संगम। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल आइए सुने।

गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी से। आइए अब सुने हसन काजमी का ये कलाम, आवाज तलत अजीज की।

हसन काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे कार्यक्रम अंजुमन। आइए आप सुने अहमद फराज का कलाम, आवाज गुलाम अली की।

0: आज अंजुमन का सफ़र बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जईबे बिना रे झूलनी, हम गवन मनाही जईबे बिना रे
2: झूलनी। आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाला है हमारा अगला कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद, बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow.